0: not mislead the students and not use them as their political.
1: Akhilesh Sharma getting us all those details, talking to us about what Rahul Gandhi has said and how center has hit back as far as all these allegations from the opposition is concerned. Let's also break down what this entire controversy is about. The Abu Dhabi exam center row, how it started, and the NTA had to come forward and clarify this entire issue. Abu Dhabi was picked via candidate login. That's what the NTA has said. The change of NEET city request was sought on the 19th of June and it was done via the student login. That's what NTA has said so far. Now, center has changed the process. That process began immediately. The center was changed once the student had put in that request into the system and the candidate's father contacted to complete the formalities. It also exemplifies NTA's student-first approach. The city correction window opened on rescheduling. About 3.2 lakh candidates used correction facility. 99.5% candidates got their preferred exam city. This only points out to the kind of volume of students that we are dealing with and the manner in which we're making sure that all the requests are taken care of. Let's talk about the story. A massive national security grid is locked in as the NTA prepares for the re-meet this Sunday. A nationwide mock drill is taking place across 5,000 centres to test rigorous anti-cheat systems. Paramilitary forces are on alert. High-level monitoring centre is tracking social media ahead of the drill to ensure security readiness for high-stakes re-meet examination. Over 2.5 lakh security personnel are enforcing a zero-failure operation, from military-grade GPS tracking to IAF airlifts and mandatory Aadhaar biometric checks. NTA is leaving absolutely zero room for any kind of error. Let's also get you the ground reports from different parts of the country. Our correspondent gets you a ground report from MD College in Parel, Mumbai, highlighting the security arrangements.
2: NEET examination, National Test Agency has started conducting mock drill here at Maulana Azad Memorial College. Here are two NEET centers. So already the mock drill has started. So nationwide mock drill will be continuing at all about 5,500 centers in 551 cities. And here in Jammu also, the mock drill is being conducted. They are trying to ensure that free and fair examination. Foolproof security arrangement. And there is a free and fair examination system. Students do not face any kind of a problem, and this time they will not be even allowed to carry with them pen. The pens will also be provided here inside the examination hall. So that is the kind of a scrutiny that will be maintained here during the mock drill also and during the examination also. So everything is being checked. So everything, the proper rehearsal is right now going on here inside MAM College. Pradeep Datta with Neeraj Kumar for NDTV.
3: Right now, we are standing at one of the biggest examination center in Bihar, and that is called Bapu Pariksha Center in Patna. And there, the re-NEET examination mock drill will take shortly, because the re-NEET exam will conduct tomorrow across the country. And therefore, you can see the paramilitary forces as well as the Bihar police forces have been deployed here. More than 46,000 students from Patna will appear in this re-NEET examination tomorrow in Patna, and as well as 95 centers is been made across the Patna for the re-NEET examination. And that is why you can see paramilitary force as well as the Bihar police has been also deployed here at the examination center in Patna. In Patna with cameraperson Asis, this is Raman Rai for NDTV.
4: To ensure that the NEET UG re-exam remains completely foolproof and transparent, this time the NTA is conducting a mega mock drill across the centers in Mumbai and the nation. At present, we are here outside an exam center in Parel, which is the Maharshi Dayanand College, and we see that security measures are being taken since morning so that the entire exam process tomorrow remains transparent. All of the important sheets like the OMR sheets and the question papers this time has been entrusted with the paramilitary forces to ensure that there's no leak that takes place, and also that during the examination process too, all of the CCTV cameras will be examined thoroughly so that the exam takes place in a smooth way and there are no cheating practices that happen while the NEET UG exam is underway. From Mumbai with video journalist Sagar, this is Sujata Dwivedi reporting for NDTV.
1: But what are the guidelines that the authorities have issued for the students? Now, the students can carry a transparent water bottle. That's allowed inside the examination hall. They can also carry their admit card in a transparent plastic pouch. Candidates may wear articles or objects of faith, depending on which faith they belong to. They have to report at the examination center early to facilitate frisking and checking that may be mandatorily conducted at different centers. Candidates may wear full sleeve garments if required. This is something that is not allowed in certain examinations, but in NEET it's allowed. Slippers and low heeled footwear, that is the preferred option. Candidates in high heels may face additional screening as well. So those are the guidelines that have been issued by the authorities. The exam all set to happen in few hours from now. Now, the Ram Mandir donation row has rapidly escalated from allegations of financial irregularities to a full-fledged SIT investigation. The controversy began on the 7th of June with claims of 5 to 7 crore in alleged misappropriation of devotees' offering, triggering a political storm and demands for transparency. As questions mounted, the Yogi Adityanath government constituted a 3-member special investigation team on 13 June, giving it 15 days to submit its finding. Since arriving in Ayodhya, the SIT has examined donation records, questioned trust officials, scrutinized cash counting process, reviewed the CCTV and verified records related to donated jewelry and the valuables in question. Multiple complaints have been filed. Dozens of employees come under scanner and investigators are now tracing the money, examining the role of key suspects. With the probe entering a crucial phase, all eyes are on the SIT's report, which is expected to determine a point in the direction whether this is a mere administrative lapse or a criminal wrongdoing or perhaps a larger conspiracy involving temple donations.
5: Ram bhaktoon par, kar sevakon par, goli chalane aur jai Sri Ram bolne par laathi bhaanjne wale log aaj updesh dene chale hain, updesh dene chale hain. बहन और भाइयों, मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं.
6: तो एसआईटी किसकी जांच कर रही है? ना एफआईआर है, किसकी जांच हो रही है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन ही नहीं है. ये तो केवल लोगों को एक भ्रमित करने का माध्यम है और लोगों को ठगने का माध्यम है. एफआईआर दर्ज ही नहीं और जांच कर रहे हैं इस, और जो जांच अधिकारी है वो खुद प्रयागराज के स्टैम्पेड में, वो खुद उसमें गुनाहगार है. विश्व विश्वास पंत उसके अंदर उसको खुद गुनाहगार है. तो ये साबित करता है पूरी तरीके से एसआईटी केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए. और कोई 15 दिन नहीं, 15 महीने ले लें, ये जितने बड़े बड़े उसमें जो मछलियां हैं उनको पकड़कर जेल भेजें. मेरी मांग है तत्काल जितने 4-5 लोगों का नाम आ रहा सबको जेल भेजा जाए.
7: ये सच बात जो है अपने आप निकलती है, ये बयानबाजी तो खुद वो कर रहे हैं. जब एसआईटी जांच चल रही है तो उनको इस पर कुछ बोलने नहीं चाहिए. ये दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा, क्या होगा, आने देते तो. ये बहुत बड़ा मामला है, राष्ट्र स्तर का मामला है.
8: कमाल हो गया कि वो योगी आदित्यनाथ जो आरोप लगते ही बुलडोजर चलाने की बात करते थे, वो सरकार जो तुरंत कहती थी कि कब किसकी गाड़ी पलट जाएगी, जिस सरकार ने कभी जांच और कानून और कोर्ट का इंतजार नहीं किया, आज वो सरकार कह रही है कि जांच का हम इंतजार करेंगे. क्यों इतनी सहानुभूति चंदा चोरों के साथ क्यों है? क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ ये कहते कि हमारे पास जिन जिन के नाम आएंगे कल ही उनके घरों पर बुलडोजर चलाऊंगा और उनके घरों को निस्ते नाबूद कर दूंगा. ये सहानुभूति चंदा चोरों के प्रति क्यों दिखाई जा रही है, इसको समझने में मुझे मुश्किल है.
9: आपसे बेहतर राम मंदिर को और राम मंदिर परिसर को कौन समझता है? आज चप्पे चप्पे में सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात हैं, चप्पे चप्पे में सीसीटीवी कैमरा मॉनिटर कर रहे हैं और फिर एक दुरुस्त ऑडिट सिस्टम ट्रस्ट के जरिए लागू भी किया गया, बावजूद इसके ये चोरी हो जाती है.
10: जो आपने अभी कहा कि सिस्टम लागू किया गया था, आदेश निर्देश तो जारी हुए, मैंने देखा है वो निर्देश कि काउंटिंग में किस प्रकार से अनुशासन का पालन होना चाहिए, सभी विवरण उसमें हैं और अलग अलग जिम्मेदारी भी तय है। SBI की क्या जिम्मेदारी होगी, ट्रस्ट की क्या जिम्मेदारी होगी, यह भी प्रारंभ में कहा गया है कि पूरी व्यवस्था पारदर्शी होनी चाहिए। लेकिन शायद निगरानी में ऐसा लगता है मुझे कि सारे निर्देशों का अनुपालन कदाचित 10% से अधिक नहीं हुआ। दैट मीन्स द इंस्ट्रक्शंस वेयर इश्यूड एंड टुडे दे स्टैंड मोर इन वायलेशन देन कंप्लायंस। तो मुख्य कठिनाई यही है और इसीलिए भविष्य का सुधार आवश्यकता है कि ये इन्फोर्स कैसे करें।
9: जो ट्रस्ट के जो शीर्ष पदाधिकारी हैं उनकी चुप्पी को लेकर विपक्ष तमाम सवाल राज्य सरकार पर उठा रहा है और ट्रस्ट को घेर रहा है। तो जो ट्रस्ट के जो शीर्ष लीडरशिप हैं, चाहे वो चंपत राय हों, अनिल मिश्रा हों, गोपाल राय हों, उनसे भी SIT पूछताछ कर रही है। तो इनकी भी जवाबदेही उतनी ही बनती है जितनी की 39 लोगों की जो इस गिनती के काम में लगे हुए थे।
10: अलग अलग होगी। एक तरफ तो अपराध का में जो लगा हुआ है, जो डुअर है, उसको आप कहें कि वो जो 40 से 44 लोग रहे दो शिफ्ट में, उनकी जिम्मेदारी डायरेक्ट होगी। इन लोगों की अलग अलग डिग्री की आप जिम्मेदारी तय करेंगे कि इन्होंने निगरानी क्या रखी। तो ये तो एक तरीके से टॉप के लोग थे जिनको यह सुनिश्चित करना था कि जो आदेश निर्गत हुए हैं उसको किस तरीके से उसका अनुपालन किया जा रहा है। और जहाँ तक श्री चंपत राय जी का प्रश्न है, चूँकि वो एक वरिष्ठता में ज्येष्ठतम व्यक्ति हैं वहाँ पर, तो हर कार्य की निगरानी वह स्वयं कर सकेंगे संभव तो नहीं है, लेकिन प्रबंधन में कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं, उन कंट्रोल पॉइंट्स पे यदि आप टैप रखें तो हाईएस्ट लेवल पे।
1: And a high-level delegation from Trinamool Congress led by Party General Secretary Abhishek Banerjee met with Lok Sabha Speaker Om Birla to formally demand the disqualification of 20 MPs from TMC in a major political confrontation. TMC delegation submitted 20 different petitions aimed at parliamentarians who had recently defected to the National Citizens Party of India. The party is advocating for swift constitutional action against rebels for changing political allegiances. Meanwhile, as per sources, Lok Sabha Speaker Om Birla will take final call on plea of rebels before the monsoon session.
11: ये घटना unprecedented है। आज तक ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको हम लोग दमदम विमान बंदर कहते हैं, ऐसा घटना आज तक नहीं घटी है। यहाँ पे लगभग 20-25 मिनट अभिषेक बनर्जी का जो क्रिमिनल सिंडिकेट है उनके कम से कम 60-70 क्रिमिनल एंटी सोशल्स यहाँ पे तांडव किए। यहाँ पे जिस टाइम पे ये हुआ, यहाँ पे VVIP मूवमेंट भी चल रहा था। हम लोगों के माननीय आदरणीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजुमदार भी पास कर रहे थे, उसको भी दिक्कत में पड़ना पड़ा।
12: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
13: Really?
12: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram and trends that kept us with the program. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.

0: today is not just about how fit you keep yourself, but it's also a journey for oneself towards its own emotional well-being and mental well-being as well. Prime Minister Narendra Modi introduced yoga in 2015 to the UN, and today what we're witnessing is its 12th edition. Take a listen to some reactions coming in as the world today celebrates yoga.
1: I think fit रहने के लिए consistent रहना बहुत जरूरी है. जो भी आप करते हो उसे daily basis पे करना बहुत जरूरी है. Yoga day establish होने से हमारे honorable prime minister ने एक बात जरूर कह दी दुनिया को कि ये हमारा था, हमारा है और हमेशा हमारा रहेगा. हम यहाँ से योगा को हर चीज़ गोरे हमें हर चीज़ यहाँ से लेकर जाते हैं, उसको सिर्फ अच्छी पैकिंग करके दोबारा वापस लेके आते.
2: मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो योग को अपनाएं. योग जो है जस्ट कीप्स यू सो बैलेंस्ड एंड सो फोकस्ड, और एक यू विल फील वेरी पॉजिटिव एज वेल व्हेन यू टेक अप योगा. कंसिस्टेंसी के बिना और डिसिप्लिन के बिना आप ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते. मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि योग जो है वो इंडिया को बिलोंग करता है और वेस्टर्नर्स अपना रहे हैं. हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ठान लिया है कि योग को वो इम्पोर्टेंस देंगे, और योग को आज ये जो अहमियत दी जा रही है वो उनकी बदौलत है.
3: फिटनेस स्टार्ट्स विथ योर सेल्फ. यू नो, अगर आप फिटनेस में बिलीव करते हैं तो मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है. एक किस्म का डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, और योगा जो है वो चीज़ आपको सिखाती है.
0: And well, as India and the world today celebrates yoga or International Day of Yoga, I'm now been joined by my colleagues Ritik Mondal live from Red Fort in Kolkata, Anushka Garg live from Red Fort in Delhi, and Anuj live from Gateway of India there in Mumbai. I'm going to first come to you, Ritik. Prime Minister Modi is leading the Yoga Day celebrations from Kolkata. Tell us what's happening around you. As we also know that apart from the Yoga Day celebrations there, the theme is healthy aging. Prime Minister Modi will also be performing yoga asanas on the Havra Bridge.
4: Well, definitely on the occasion of 12th International Yoga Day, a mega karyakram, a mega event is underway at Kolkata's iconic Red Road. Any moments from now, Prime Minister is expected to arrive the venue. Let me tell you, over 35,000 participants are going to showcase International Yoga Day at various locations, including Kolkata's iconic Red Road and Howrah Bridge and several on the river of Hooghly, while traveling or taking ferry on boats. We have some of the participants over here. They have also arrived at the iconic Red Road to take part in this very interesting event. जिस तरीके से हम समझ रहे हैं, एक बड़ा कार्यक्रम है. कैसे उत्साहित है, प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड में आज का ये शुभ घड़ी.
5: बहुत ही लाइक आइकॉनिक चीज होने वाला है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने वाले, बट लाइक रिग्रेट है हमें अंदर.
4: पहली बार है आप यहाँ इस तरीके की कार्य?
5: फर्स्ट टाइम है मेरा.
4: योगा आपके लिए क्या महत्व है? सुबह सुबह चाय की चुस्की ले रहे हैं, यानी थोड़ा वार्म अप हो रहा है. किस तरीके से योगा आपकी जिंदगी में और आम जिंदगी, जो हेल्दी लाइफ की चर्चा चलती है, किस तरीके से मायने रख?
6: हम लोग तो बाबा रामदेव बाबा का योगा करते ही हैं घर में, पूरा फैमिली हम लोग. और ये बहुत ज़रूरी है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर योगा करना, और उसके बाद हम लोगों का डबल योगा होता है, प्लस घर का भी सारे काम हम लोग करते हैं. और हमारे ये जो शो हो रहे हैं, ये प्रधानमंत्री जो आ रहे हैं मोदी जी, इसके लिए हम लोग बहुत बहुत खुश है, क्योंकि हमारे कलकत्ता में ये फर्स्ट टाइम हो रहा है. रेड रो में रोड में कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं था, ये फर्स्ट टाइम है. थैंक यू.
4: इट्स अ हिस्टोरिक इवेंट. आप कहाँ से आए हुए हैं?
7: हम हावड़ा से हैं.
4: हावड़ा से, तो इस बार तो सबसे खास रहा, हावड़ा के ब्रिज के ऊपर भी योगा हो रहा है. किस तरीके से देख रहे हैं, और आपकी जिंदगी में योग का क्या महत्व है?
7: मेरे योग का मतलब है सिर्फ वार्म अप या जो सब कर रहे हैं, ये नहीं है. योगा मतलब हेल्थ को अच्छा से रखना, दिल को इतना सब दूर, डिप्रेशन, सैडनेस सब दूर करके इतना खुला हवा में करो.

0: down. Both legs straight.
1: What asana is this?
0: So this is Dandasana. Spine straight. I would also like to tell that people are sitting like this with making a hump in their back. So their body posture become like this. So I just want to tell all the people, just whenever you sit on the chair, on the mat, on the floor, try to sit with the spine straight. Always, it improves your body posture. So we'll start with Paschimottanasana. Slowly inhale, interlock your fingers, palm facing upward. Now stretch from your lower back as much as you can. Now slowly exhale, go forward, try to grip your toes, elbows down and forehead down.
2: Okay, this is very tough, but I think this is very good for blood circulation.
0: Yes, this
2: and
0: is good for your blood circulation, good for your back muscles, and it also stretches your hamstring, your soleus. So it is a very good stretch for your legs and your back. Okay, now inhale, come back. Breathe in, breathe out. The very basic asana now I'm showing. This is a Baddhakonasana. Join your foot together.
1: But also tell us that how many times do you have to do these asanas? Like, what is the repetition?
0: You don't need to repeat the postures. You just need to hold the posture. As they all are the static asanas. Yes. So you need to hold for 10 to 15 seconds. That is enough.
1: But for some people who don't have flexibility like me and for a lot of people perhaps watching the show who don't have a lot of flexibility in their body, how does yoga increase that?
0: They can start with very basic asanas, very basic shukshma kriyas like neck rotation, hand rotation, shoulder rotation. So yeah, they can start with this. And they can slowly reach their advanced level.
1: Okay.
0: Yes.
1: So this asana is?
0: This is Baddhakonasana. Hmm. So join your foot together, just like this.
1: I'm trying.
0: No, this is the easy one. Now start moving your knees up and down. This is called as butterfly pose as well.
1: Okay.
0: Spine straight. So everyone can practice this asana. This is also helpful for period pain. And it is a very good hip opener.
1: So this also increases the flexibility.
0: Yes.
1: You know, in today's day and age, a lot of people say that we don't have much time. We have maybe 5 minutes or 10 minutes in a daily basis. But yoga is also something which does not require an expensive gym subscription
0: yes.
1: or big
0: yes.
1: equipment. All it requires is one mat and maybe a yoga instructor and you're good to go. But tell us and all of you about any one asana which can be done, you know, within a very short period of time, but its effect is paramount. It's a lot. It's effects really fast. What could that be?
0: I would suggest they can practice Surya Namaskara. There are 12 postures in the whole series. So everything is added in the Surya Namaskara, like back bending, forward bending, and twisting. Yes. Every muscle gets stretched in the Surya Namaskara. Your back, your leg muscles. So yeah, everyone can practice Surya Namaskar on daily basis. Just one or two rounds if they don't have time.
1: Hmm.
0: Yeah.
1: So this asana, what we're doing is good for the back and for your lower back as well.
0: And for your hip opening.
1: Okay.
0: It opens your inner thighs. Hmm. Yes. Now we can relax. Just relax your legs. Okay. Now next we'll be doing Vajrasana. You have to fold your legs and sit down on your heels and place both the hands on your knees. So this is Vajrasana. This is the only asana that we can practice after eating.
1: Eating food also.
0: Yes, yes. This is very
1: right,
0: good for...
1: We're cutting across life.
3: Ravi ji, Urjavan Mukhyamantri, Shubhendu Adhikari ji, Kendra mein mere sahyogi, प्रताप राव जाधव जी अन्य सभी महानुभाव यह कोलकाता में जुटे सभी प्रतिभागी देश विदेश में योग से जुड़ रहे सभी साथी और मेरे प्यारे देशवासियों 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही है। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में, कोलकाता में, यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा। ये अद्भुत पहल है, स्वच्छता से स्वागत। स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया है, नागरिक कर्तव्य निभाया गया है, वो सभी देशवासियों के लिए आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया है। साथियों, योग दिवस के अवसर पर आज बंगाल में होना बहुत ही विशेष है। बंगाल की ये पवित्र भूमि, जहां भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया, जहां से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को योग से परिचय कराया, जहां महर्षि अरविंद जैसे महान योगी ने जन्म लिया, लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने जहां योग परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा है। इसी बंगाल की धरती पर जन्मे गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का मानना था कि मनुष्य की पहचान अलग अलग रहने में नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में है। यही जुड़ाव योग का मूल भाव है। महर्षि अरविंद भी कहते थे, हमारा पूरा जीवन योग है, चाहे हमें इसका बोध हो या न हो। योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है। साथियों, योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है। योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव जीवन के जीवन का चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। फ्रेंड्स, व्हेन वी स्पीक ऑफ योगा फॉर हेल्दी एजिंग, इट मींस दैट वी कैन वर्क टू एंश्योर दैट एज डज नॉट रिड्यूस ह्यूमन पोटेंशियल। योग कैन हेल्प ह्यूमन लाइफ टू एस्पायर फॉर कॉन्स्टेंट ग्रोथ। आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर फ्लेक्सिबल एट 40 देन वी वेर एट 20। आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर एनर्जेटिक एट 50 देन वी वेर एट 30। आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर रेजिस्टेंट टू लाइफस्टाइल डिसीज एट 70 देन वी वेर एट 50। दिस इज वेर योगा कैन हेल्प अस। इट हेल्प्स अस ट्यून अवर बॉडीज टू बी फ्लेक्सिबल। इट कीप्स अवर एनर्जी लेवल हाई। इट ऑल्सो हेल्प अस मेंटेन अ काम स्ट्रेस फ्री लाइफ एंड हेल्प टू कीप लाइफस्टाइल डिजीज अवे। मोर ओवर विथ रेगुलर प्रैक्टिस योगा टीचिज अस टू रिमेन लाइफ लॉन्ग लर्नर्स ऑफ अवर ओन बॉडीज एंड माइंड्स। द मोर वी नो अबाउट अवर सेल्व्स द बेटर वी कैन मैनेज अवर सेल्व्स। दैट इज व्हाई योगा फॉर हेल्दी एजिंग, दिस थीम मस्ट बी सीन एज वन फॉर पीपल ऑफ ऑल एजेस, नॉट जस्ट फॉर द एल्डरली। साथियों, गीता में भगवान कृष्ण ने योग के विषय में कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुखः। अर्थात संतुलित आहार विहार से, संतुलित क्रियाओं और कर्मों से, संतुलित नींद और जागने से योग दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। ये संतुलन ही योग का आधार है। यही संतुलन हमारे जीवन का आधार भी है। लेकिन ज्यादातर लोग आज इस आधुनिक समय में जीवन के असंतुलन से ही जूझ रहे हैं। बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है उनको। योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध। ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है, इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है इतना ही नहीं है, योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर करोड़ों लोग योग से जुड़ते हैं, लेकिन आज का ये दिन हमें अपने साझा संकल्प को फिर दोहराने का अवसर देता है। आइए हम संकल्प लें योग को केवल एक दिवस तक सीमित नहीं रखेंगे, योग को केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखेंगे, हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों का हिस्सा बनाएंगे। साथियों, इसी दिशा में इस वर्ष योग 365, योग 365 की पहल को भी आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत 100 दिन के ऑनलाइन योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अभूतपूर्व जनभागीदारी देखी गई है। 130 देशों के 30 लाख से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया है। साथियों, जब समाज स्वस्थ होगा तब राष्ट्र भी अधिक सक्षम, अधिक समृद्ध और आत्मविश्वासी बनेगा। मैं इसके लिए मैं सबके लिए कामना करता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: And well, that was Prime Minister Narendra Modi leading India on World Yoga Day from Kolkata's historic Red Road. He spoke about the benefits of yoga and also asserted on the theme for this year's yoga, which is Yoga for Healthy Aging. Prime Minister Modi underscored its importance in promoting physical health, mental well-being, emotional resilience and also active aging, all of which contribute to a better quality life. Well, Yoga Day celebrations are being held at nearly 2,500 locations.

0: across the world, with more than 210 Indian missions also taking part in the World Yoga Day today. Prime Minister Modi also gave us a lowdown of all the benefits of yoga. It's of course India's gift to the world, India's ancient gift to the world, and it is all the more paramount in today's day and age, considering the kind of lifestyle that all of us lead. Prime Minister Modi also gave us a lowdown of the kind of modern ailments that people go through, and that is why the theme this year resonates with people and culture of all age groups. As you can see on your screens right now, these are the live visuals from the Red Road in Kolkata, where Prime Minister Narendra Modi is leading India's International Yoga Day. It is the 12th edition. It is a global wellness movement from India for the world, because today India leads the wellness movement forward through a healthy way of living through yoga, and the world, of course, follows. Prime Minister Modi further asserted that yoga is not just something for physical health and physical well-being, but also emotional well-being and active aging as well. Well, in moments from now, Prime Minister Modi is there in Kolkata's Red Fort. He will also be taking part in mass yoga demonstrations on 500 boats across the Hooghly River. But on your screens right now, hundreds of people gathered there at Kolkata's Red Fort practicing yoga on the World Yoga Day today. It is the 12th edition. Prime Minister Modi also spoke about how India has opened a wellness path for the world. Remember, yoga was introduced in the UN in 2014, and after which it was accepted by various countries, and today it is the 12th edition, because the world has adopted yoga as a healthy way of living. On the screens right now are the visuals of yoga being performed from all across the iconic places here in India. We have Indian Army soldiers as well performing yoga on the mountainous terrain. Akshay Kumar there performing yoga here in New Delhi. Prime Minister Modi leading yoga's celebrations, and even India's Finance Minister Nirmala Sitharaman performing yoga today. Himanta Biswa Sarma as well performing yoga in Assam. Remember, yoga is being performed at various historic locations today. All the states, union territories, performing yoga, imbibing yoga as a healthy way of living. It is the 12th edition of International Day Yoga today, a way of living, breathing, balancing. Prime Minister Modi also asserted on how yoga keeps the balance, a healthy body and a healthy mind. And he also spoke about how we must be more flexible at 40 than when you're 20. And that is exactly the theme of this year's yoga, which is yoga for healthy aging. Prime Minister Modi further asserted on how it's extremely important to imbibe yoga as something that you do every day, as a part of your lives, because yoga is India's ancient gift to the world, accepted by the UN in 2014. And today we are celebrating 12 years of World International Day Yoga. Well, yoga also helps not just in physical well-being, but also inner peace. It enriches every aspect of your body. And today it is celebrated in 190-plus countries. We are showing you live visuals of Prime Minister Modi there at Kolkata's Red Fort. And there he will be practicing in the yoga sessions along with the other practitioners of yoga at Kolkata's Red Fort. Kolkata's Red Road there. The Prime Minister is spearheading the Yoga Day celebrations, and celebrations are also taking place in 100 iconic sites here in India. And well, as you can see, Prime Minister Modi there practicing yoga at Kolkata's Red Road.
1: और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर और गर्दन को पीछे की ओर झुकाइए सांस नीते नीते पीछों दिखे माथा झोकान और धीरे धीरे श्वास जोड़ते हुए सिर और गर्दन को सामान्य स्थिति में लेके आइए सांस नीते नीते स्वाभाविक अवस्था फिर आसुन इस तरह एक और बार इसका अभ्यास करेंगे यही अभ्यास पुनरावृत्ति करून पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर रहना है गर्दन पे उत्पन्न होने वाले इच्छाओं को महसूस करने का प्रयास और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लेके आइए, स्वाभाविक अवस्था फिर आसुन। अगला अभ्यास, गर्दन को दाएं और बाएं झुकाने के अभ्यास, राइट एंड लेफ्ट झुकाने का अभ्यास।
2: परवर्ती अभ्यास, डाने एवं बामे कात करार।
1: श्वास छोड़ते हुए सिर और गर्दन को राइट साइड दाएं के ओर झुकाइए,
2: सांस छाड़ते छाड़ते माथा डान दिखे कात करान
1: और धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन को वापस सामान्य स्थिति में लेके आइए,
2: सामान्य अवस्था ही फिर आसुन।
1: इस तरह हम बाएं तरफ भी अभ्यास करेंगे,
2: बाम दिख थे अनुशीलन टी
1: अभ्यास। पूरा ध्यान श्वास पर, श्वास पर रहना है और पूरा ध्यान गर्दन पे रहना है और धीरे धीरे श्वास भरते हुए को सामान्य स्थिति में लेके
2: स्वाभाविक अवस्था ही फिर आसुन।
1: अगला क्रिया, गर्दन को दाएं और बाएं मोड़ने का अभ्यास,
2: घर डाने एवं बामे घुरानोर अभ्यास।
1: श्वास छोड़ते हुए सिर और गर्दन को दाएं तरफ मोड़िए, राइट साइड मोड़िए,
2: सांस छाड़ते छाड़ते अपना घर डान दिखे घुरान
1: और भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए,
2: सामान्य अवस्था फिर आसुन।
1: पुनः इसका अभ्यास लेफ्ट साइड से करेंगे,
2: यही अभ्यास।
1: श्वास भरते हुए सिर और गर्दन को सामने लेके आइए और श्वास भरते हुए इस प्रक्रिया कीजिए। इसका अभ्यास एक और बार करेंगे, पूरा ध्यान श्वास पर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गर्दन को सामान्य स्थिति में आइए,
2: स्वाभाविक अवस्था है फिर आसुन।
1: अगला अभ्यास, गर्दन को घुमाने का।
2: परवर्ती अभ्यास, घर घुरानोर।
1: धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाइए,
2: सांस छाड़ते छाड़ते माथा सामने दिखे झुकान
1: और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऊपर की तरफ घुमाएंगे,
2: सांस नीते नीते घोड़ी कांटार दिखे घूर्णन दिन
1: और श्वास भरते हुए सिर को पुनः आगे लेके आइए,
2: सांस छाड़ते छाड़ते सामने दिखे न्यास।
1: एक और बार इसका अभ्यास करेंगे, इस प्रक्रिया में आंखें खुली रखना है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए,
2: स्वाभाविक अवस्था फिर आसुन।
1: अब हम इसका विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गर्दन को एंटी क्लॉकवाइज ऊपर लेके जाइए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर और गर्दन को नीचे। एक और बार
2: विपरीत दिख थे अनुशीलन टी अभ्यास करून
1: और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए और गर्दन को सामान्य स्थिति में लेके आइए। आप दोनों हाथों को नीचे की ओर लेके जाइए और सामान्य स्थिति में खड़े हो जाइए,
2: सामान्य अवस्था फिर आसुन।
1: अब हम स्कंद चालन का अभ्यास करेंगे,
2: कांधे एवं बाहुर आंदोलन।
1: जिसे भी कंधों में दर्द है, फ्रोजन शोल्डर है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, ऐसे व्यक्ति इसका अभ्यास सावधानी के साथ करना है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को साइड से, बगल से सिर के ऊपर लेके जाइए,
2: सांस नीते नीते दोनों हाथ के ऊपर नियासुन।
1: दोनों हाथों को हथेलिया बाहर की तरफ रहना है,
2: दोनों हाथेर तालु बाहर दिखे।
1: इस अवस्था में थोड़ी देर रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आइए,
2: स्वाभाविक अवस्था फिर आसुन।
1: एक और बार इसका अभ्यास करेंगे, पूर्ण श्वास प्रश्वास पर धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथों को बगल में से ऊपर की ओर लेके जाइए, हथेलिया का और मुख बाहर की तरफ रहना है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आइए,
2: सांस छाड़ते छाड़ते सामान्य अवस्था फिर आसुन।
1: अब हम स्कंद चक्र का अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे दोनों हाथों को बगल में से कंधों के बराबर लेके आइए,
2: आस्ते आस्ते दोनों कांध के हाथेर सामने
1: और हथेलियों को मोड़कर कंधों पर रखिए,
2: दोनों कोनोई के भाज करून,
1: दोनों कोनी को छाती के सामने लेके आइए,
2: दोनों कोनोई के छातीर सामने नियासुन
1: और धीरे धीरे कोनी को ऊपर से नीचे की ओर गोलाकार डायरेक्शन में घुमाइए, श्वास प्रश्वास के साथ
2: धीरे धीरे गोलाकार आकृति तक घोड़ान।
1: पूरा ध्यान कंधों पे उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस कीजिए। एक और बार इसका अभ्यास करें। अब हम इसका अभ्यास विपरीत दिशा में भी करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर, श्वास लेते हुए कोनी को ऊपर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे, और दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आइए और पुनः सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए।
2: सामान्य अवस्था ही फिर आसन।
1: अगला अभ्यास कटिचालन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को कंधों के समानांतर लेकर आइए।
2: दोनों पैर माझखाने कांधेर समान दूरत्व बजाय रखून।
1: दोनों हाथों को सामने से ऊपर लेके आइए कंधों के समानांतर।
2: दोनों हाथ के कांधेर समान सामने।
1: हथेलियों को मुख अंदर की तरफ रहे।
2: हाथेर दोनों तालु सामने दिखे।
1: धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दाएं तरफ राइट साइड कमर से घुमाइए।
2: सांस छाड़ते छाड़ते शरीर के डान दिखे घोड़ान।
1: इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास लेते हुए पुनः सामान्य स्थिति में आइए।
2: सांस छाड़ते छाड़ते स्वाभाविक अवस्था फिर आसन।
1: इसका अभ्यास विपरीत दिशा में भी करेंगे।
2: विपरीत दिशा से अपनी अभ्यासता करूं
1: और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए। एक और बार इसका अभ्यास। दाई तरफ धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में और धीरे धीरे श्वास लेते हुए लेफ्ट साइड घूमेंगे और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में और दोनों हाथों को सामान्य अवस्था में लेके आइए।
2: सामान्य अवस्था ही फिर आसन।
1: अब हम घुटना चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे।
2: परवर्ती अभ्यास हाटूर संचालन।
1: श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से कंधों के समानांतर लेके आइए।
2: सांस नीते नीते हाथ के छाती सामने नहीं आसुन।
1: हथेली का रुख नीचे की ओर रहना है।
2: हाथेर तालु नीचे दिखे।
1: श्वास छोड़ते हुए घुटने से मोड़िए।
2: सांस छाड़ते छाड़ते दोनों हाथों के भाज कोडून।
1: कुर्सी के ऊपर बैठे की स्थिति में आना है और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास लेते हुए पुनः खड़े हो जाइए। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर और धीरे धीरे श्वास भरते हुए खड़े हो जाइए।
2: स्वाभाविक अवस्था फिर आसन
1: और धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आइए। अब हम योगासनों का अभ्यास शुरू करेंगे।
2: एक बार हम आसन अभ्यास शुरू कर दो।
1: पहला अभ्यास ताड़ासन।
2: प्रथम अभ्यास ताड़ासन।
1: दोनों पैरों के बीच में 2 इंची की दूरी बना के रखे।
2: दोनों पैर माझखाने 2 इंची दूरत्व बजाय रखून।
1: दोनों हाथों को कंधों के बराबर आगे से समानांतर लेके आइए।
2: दोनों हाथ के छाती सामने कांधे समान नहीं आसुन।
1: दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाइए।
2: दोनों हाथ के जोरो करून
1: और हथेलियों को बाहर की तरफ घुमाइए।
2: बाहर दिखे घूरिए दिन हाथेर तालू
1: और धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सिर के ऊपर लेके जाइए।
2: सांस नीते नीते हाथों को दिखे।
1: हो सके तो एड़ियों को उठाने का प्रयास।
2: संभव होले गोराली रोपोट
1: संतुलन संतुलन बनाने का प्रयास। इस और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आइए।
2: सांस छाड़ते छाड़ते हाथ नीचे
1: और सामान्य स्थिति में आ जाइए और विश्राम कीजिए।
2: आराम करून।
1: अगला अभ्यास पादहस्तासन का अभ्यास करेंगे।
2: परवर्ती अभ्यास पादहस्तासन।
1: जिसे भी हाइपर बीपी है, हर्निया है, हाइपर गैस्ट्राइटिस है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। दोनों पैरों के बीच में 4 इंची का दूरी बना के रखिए।
2: दोनों पैर माझखाने 4 इंची दूरत्व बचाए दिन।
1: दोनों हाथों को श्वास भरते हुए सामने से सिर के ऊपर उठाइए।
2: दोनों हाथ के सामने थे के माथा रोपोर निये जान
1: और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकाइए।
2: सांस छाड़ते छाड़ते कोमोर थे के झोंकान।
1: दोनों हाथों को दोनों पैरों के पंजे के पास रखने का प्रयास।
2: दोनों हाथ के पायर पास स्थापित करून
1: और दोनों घुटने को सीधा रखने का प्रयास।
2: दोनों हाथों के सोजा करार प्रयास करून।
1: इस अवस्था में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रहिए और धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर लेके आइए।
2: सांस नीते नीते फिर आसुन
1: और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की ओर लेके आइए और विश्राम कीजिए।
2: आराम करो।
1: अगला अभ्यास अर्ध चक्रासन।
2: परवर्ती अभ्यास अर्ध चक्रासन।
1: दोनों हाथों को कमर पर रखिए।
2: दोनों हाथ के कोमड़े रोपोर राखून
1: और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर और गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाइए।
2: धीरे धीरे अपने बॉडी के पिछन दिखे झोंकान।
1: इसका अभ्यास करते समय आंखें खुली रखना है।
2: ये अनुशीलन समय चोक दुटो खोला थाकबे

0: और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पुनः सामान्य स्थिति में आइए।
1: सांस छोड़ते छोड़ते स्वाभाविक अवस्था फिर सुन
0: और दोनों हाथों को नीचे की तरफ लीजिए और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास त्रिकोणासन का करेंगे।
1: परवर्ती अभ्यास त्रिकोणासन।
0: दोनों पैरों के बीच में 3 या 4 फीट का अंतर बनाए रखिए।
1: दो पैर माझखाने 3 से 4 फीट दूरत्व बजाय रखें।
0: दोनों हाथों को बगल में से कंधों को समानांतर लेके आइए।
1: दो हाथ के कांधे समांतराल ले आसो।
0: दाएं पैर को दाएं तरफ, राइट लेग को राइट साइड घुमाइए।
1: डान पैर पाता डान देके घुड़िए दिन।
0: और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को राइट साइड झुकाते जाइए।
1: सांस छोड़ते छोड़ते शरीर के डान देके झुकिए दिन।
0: राइट हैंड दायरे पैर पे पीछे की तरफ या टखनों पे स्थापित करे।
1: अपना डान हाथ पायर काछे स्थापित करूं
0: और सिर को ऊपर के आसमान की तरफ देखिए और थोड़ी देर इस अवस्था में रहिए।
1: विशाल का आकाशेर दिके देखार चेष्टा करूं एवं ये अवस्थाएं बजाय थाकून।
0: और श्वास भरते हुए वापस सामान्य स्थिति में आइए।
1: स्वाभाविक अवस्थाएं फिर आसूं।
0: राइट लेग को सीधा कीजिए। इस तरह दूसरे पैरों से भी अभ्यास करेंगे। लेफ्ट लेग को लेफ्ट की तरफ घुमाइए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को लेफ्ट साइड झुकाते जाइए। बाय लेफ्ट का बाय पैर पे रहना है और सिर को ऊपर की तरफ कीजिए और इस अवस्था में सामान्य स्थिति में थोड़ी देर बने रहिए श्वास प्रश्वास के साथ और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ आइए। पैर को सीधा कीजिए और हाथों को नीचे लेके सामान्य स्थिति में खड़े हो जाइए।
1: स्वाभाविक अवस्था फिर आसन।
0: अब हम बैठकर करने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे।
1: एवर हमारा बोसे कड़ा आसन को अभ्यास करबो।
0: धीरे धीरे से बैठ जाइए।
1: नीचे जाएगा बोसे पड़ून।
0: पैरों को सामने की तरफ सीधा कीजिए।
1: दुटो पाके सामने दिखे सोजा करून।
0: दोनों हाथों को नितंब के पास सहजता से रखिए।
1: दुटो हाथ के नितंबर पास रखून।
0: कमर गर्दन सीधा रखे।
1: कुमोर एवं घर सोजा रखून।
0: इसको हम दंडासन कहते हैं।
1: एक दंडासन बोला है।
0: अब दंडासन के पश्चात हम आगे भद्रासन का अभ्यास करेंगे।
1: परवर्ती अभ्यास भद्रासन।
0: जिसको भी घुटने में दर्द है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, घुटने का सर्जरी हुआ है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। दंडासन की स्थिति में दोनों पैरों को एक साथ मोड़िए और दोनों तलवों को मिलाइए।
1: दुटो पायर पाता के एक सौ जोड़ो गुरुन
0: और पंजों को दोनों हाथों से पकड़िए।
1: पायर आंगुल गुलो के हाथ दिए धरार चेष्टा करूं।
0: एड़ियों को धीरे धीरे शरीर की तरफ खींचिए।
1: गोराली के निजे नितंबर काछे नियासर चेष्टा करूं
0: और घुटने को जमीन पर स्थापित करने का प्रयास।
1: हाटू मेजर दिखे।
0: सिर गर्दन सीधा रखे और सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए और धीरे धीरे दोनों हाथों को छोड़िए, पैरों को आगे की तरफ फैलाइए और दंडासन में आइए और शीतल दंडासन में विश्राम कीजिए। दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाइए।
1: दोनों हाथ के पीछे नर दिखे निये जान
0: और दोनों पैरों के बीच में 1 फीट का अंतर रखिए।
1: दोनों पैर माझखाने 1 फीट दूरत्व बजाय रखून।
0: गर्दन को एक तरफ दाई या बाई तरफ रखकर विश्राम कीजिए।
1: घर जेकोनो दिखे जेमन डान दिखे एवं बाम दिखे।
0: अगला अभ्यास वज्रासन का करेंगे।
1: परवर्ती अभ्यास वज्रासन।
0: जिसे भी घुटने में दर्द है, आर्थराइटिस है, सर्जरी हुआ है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। अब हम शीतल दंडासन से धीरे धीरे एक एक पैर को मोड़ते हुए नितंब के नीचे लेके आइए।
1: धीरे धीरे एकटा कोड़े पा नितंबर काछे भाज करूं।
0: एड़ियों को बाहर और घुटने मिले हुए रहना है।
1: हाटू जोरो थाकबे एवं गुराली
2: बाहर। आसना सोफा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी लीडिंग इंडिया ऑन टुडेज इंटरनेशनल योगा डे द 12th एडिशन। बट दिव्या आप टॉक टू अस मोर अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ ऑल दीज आसनास दैट वी हैव डन सो फार।
3: Yeah. So there are some very basic postures and there are multiple benefits of all these asanas. As you can see, now we are doing Vajrasana. It has also multiple benefits, but especially it is known for improving your digestive system. Yes. In

0: 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। Our target must be to be more energetic at 50 than we were at 30. Our target must be to be more resistant to lifestyle disease at 70 than we were at 50. This is where yoga can help us. It helps us tune our bodies to be flexible. It keeps our energy level high. It also helps us maintain a calm, stress-free life and help to keep lifestyle disease away.
1: And well, that was Prime Minister Modi's message on World Yoga Day today. It's the 12th edition after Prime Minister Modi brought yoga in the UN in 2014. And the theme this year is healthy aging. On that note, we slip into a very short break.

0: And time to cut across to Prime Minister Modi. Prime Minister Modi there in Kolkata inaugurating the naval outreach program in West Bengal.
1: Atmanirbhar Bharat, Surakshit Bharat, aur Viksit Bharat se juda ek mahatvapurn karyakram ho raha hai. Kuch der pehle hai INS Agraya, INS Dunagiri और INS Sanshodhak को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है. वैसे आज 21 जून को वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे के रूप में भी मनाया जाता है और ये बहुत ही अद्भुत संयोग है कि आज के दिन हमने भारत का सबसे एडवांस हाइड्रोग्राफी जहाज INS Sanshodhak कमीशन किया है. मैं भारतीय नौसेना को इन परियोजनाओं से जुड़े सभी वैज्ञानिकों को, इंजीनियरों को, श्रमिकों को और मेरे

प्यारे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, दुनिया गवाह है कि मैरिटाइम क्षमता के बिना कोई भी राष्ट्र बड़ी शक्ति नहीं बन सकता। समुद्र से विकास जुड़ा है, सुरक्षा जुड़ी है, समृद्धि जुड़ी है। आज दुनिया का अधिकांश व्यापार समुद्री मार्गों से ही होता है। दुनिया को जोड़ने वाले डेटा के विशाल नेटवर्क समुद्र के नीचे से गुजरते हैं। आने वाले समय में क्रिटिकल मिनरल्स, डीप सी रिसोर्सेज और नई ऊर्जा के स्रोत भी समुद्र से ही जुड़ेंगे। इसलिए जिस देश का समुद्री सामर्थ्य मजबूत होगा, उसका आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव भी उतना ही मजबूत होगा। और भारत इस वास्तविकता को अच्छी तरह से समझता है। भारत इसके लिए स्वयं को तैयार कर रहा है और आज का ये दिन इस बात का साक्षी है कि हमारी क्षमता क्या है, हमारा कौशल क्या है। साथियों, कुछ वर्ष पहले जब हमने INS विक्रांत को राष्ट्र को समर्पित किया गया था, तब भारत ने अपने समुद्री सामर्थ्य के नए अध्याय का उद्घोष किया था। विश्व भर के सामने हमारे सामर्थ्य का वो उद्घोष था। INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। आज INS अग्रय, INS दुनागिरी और INS संशोधक उसी यात्रा को नई गति दे रहे हैं। ये तीनों पोत भारत के तीन महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है, भारतीय इंजीनियरों का कौशल लगा है, भारतीय श्रमिकों का परिश्रम लगा है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है। साथियों, आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की पहचान विश्व के बाजार बनने से नहीं है, मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है। भारत निर्माता बनना चाहता है और जिस दिन निर्माता होगे ना, उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। और इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बीते वर्षों में 40 से अधिक मेड इन इंडिया युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल

0: शामिल हुई है, यानी लगभग हर कुछ सप्ताह में भारतीय नौसेना को एक नई शक्ति मिली है। वर्तमान में भी 45 बड़े नौ सैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। यह केवल संख्या नहीं है, यह भारत की औद्योगिक क्षमता का प्रमाण है, यह भारत के भविष्य का संकेत है। साथियों, आने वाले वर्षों में भारत का मैरिटाइम सेक्टर लाखों नए रोजगार तैयार करने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि हम मैरिटाइम सेक्टर को केवल एक सेक्टर, आइसोलेटेड सेक्टर नहीं मानते। हम इसे विकसित भारत के रोजगार इंजन के रूप में देखते हैं। एक आधुनिक जहाज में सैकड़ों टन स्टील लगता है, इलेक्ट्रॉनिक्स लगते हैं, मशीनरी लगती है, हजारों पुर्जे लगते हैं, और इन सब के पीछे हजारों कंपनियां काम करती हैं, यानी हजारों युवाओं को रोजगार भी मिलता है। आज जिन तीन जहाजों की कमीशनिंग हुई है, उनके निर्माण में 200 से अधिक एमएसएमईज ने योगदान दिया है। हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में इन 200 एमएसएमईज में, इन लघु उद्योगों में रोजगार पैदा हुआ होगा। साथियों, अब समय आ गया है कि भारत समुद्री शक्ति के अगले चरण में प्रवेश करे। इसलिए भारत ने शिप बिल्डिंग के क्षेत्र के लिए एक नई दृष्टि के साथ आगे बढ़ना शुरू किया है। हाल के वर्षों में अनेक पॉलिसी रिफॉर्म्स किए गए हैं। घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं, और शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर, शिप रिसाइकलिंग तथा एमआरओ को एक बड़े राष्ट्रीय मिशन के रूप में देखा जा रहा है। साथियों, शिपिंग सेक्टर के लिए 70,000 करोड़ रुपए का जो प्रोत्साहन पैकेज घोषित किया गया है, वह केवल एक आर्थिक निर्णय नहीं है, वह भारत के समुद्री भविष्य में निवेश है, वह भारत के औद्योगिक विस्तार में निवेश है। साथियों, भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है।
1: Prime Minister Modi there commissioning three indigenously built frontline Indian Navy platforms, and this marks a major milestone in India's maritime and defence capabilities. With that, we're slipping into a short break. Back with a whole lot more. Stay with us.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: Where the software engineer meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.

0: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: सबका राजा आरती और मसाला।
3: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
4: दिस इजंट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज अबाउट हाउ यू मूव।
5: दिस कार मेक्स नो सेंस, येट इट मेक्स एवरी सेंस।
6: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
7: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
8: Yes. You know, in today's day and age, a lot of people say that we don't have much time. We have maybe 5 minutes or 10 minutes in a daily basis. But yoga is also something which does not require an expensive gym subscription.
9: Yes.
8: Or big.
9: Yes.
8: Equipment. All it requires is one mat and maybe a yoga instructor, and you're good to go. But tell us and all of you about any one asana which can be done, you know, within a very short period of time, but its effect is paramount. It's a lot. It's if effects really fast. What could that be?
9: I would suggest they can practice Surya Namaskara. There are 12 posture in the whole series, so everything is added in the Surya Namaskara, like back bending, forward bending, and twisting. Yes, every muscle gets stretched in the Surya Namaskara. Your back, your leg muscles. So yeah, everyone can practice Surya Namaskar on daily basis. Just one or two rounds if they don't have time.
8: Hmm.
9: Yeah.
8: So this asana, what we're doing is good for the back and for your lower back as well.
9: And for your hip opening.
8: Okay.
9: It opens your inner thighs. Hmm. Yes. Now we can relax. Just relax your legs. Okay. Now next we'll be doing Vajrasana. You have to fold your legs and sit down on your heels and place both the hands on your knees. So this is Vajrasana. This is the only asana that we can practice after eating.
8: Eating food also.
9: Yes, okay. Yes. This is very
8: right,
9: good for...
8: We're cutting across life.
10: Ravi ji, Urjavan Mukhyamantri, Shubhendu Adhikari ji, Kendra mein mere sahyogi, प्रताप राव जाधव जी, अन्य सभी महानुभाव, यहाँ कोलकाता में जुटे सभी प्रतिभागी, देश विदेश में योग से जुड़ रहे सभी साथी और मेरे प्यारे देशवासियों, 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में, कोलकाता में, यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा। ये अद्भुत पहल है, स्वच्छता से स्वागत। स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया है, नागरिक कर्तव्य निभाया गया है, वो सभी देशवासियों के लिए।
11: Good morning and welcome. Thanks very much for joining us here on NDTV. And a big day today for close to 23 lakh students across the country as they appear for the re-examination of NEET. It's going to be a massive test of trust. And Team NDTV is going to be live with you from across centres in the country. Let's get you started with the headlines. More than 22 lakh medical aspirants are preparing to appear for the re-NEET exam, making it one of the biggest tests, not just for students, but also for the NTA after the controversy that rocked the original paper. All eyes now on whether the system can restore trust and ensure a fair, transparent, and most importantly, a free process. World marks International Yoga Day 2026. Millions across continents are coming together on the mat to celebrate India's ancient gift to humanity. From mass yoga sessions in capitals across the globe to Prime Minister Modi leading the celebrations in India. A political and administrative storm is brewing over allegations linked to donations and offerings at the Ram Temple. SIT probe is now tracking the disappearance of valuable offerings, including gold, silver and Charan Padukas, with scrutiny extending to individuals associated with the temple administration.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: Where the software engineer meets the talented photographer to create the big dream, the world comes together at Sharda University.
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा।

0: Aisha Sehgal on Prime 5, only on NDTV 24/7.
1: Where the software engineer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.
2: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli. Swadisht, sehatmand, har roz.
0: Yes. In today's day and age, a lot of people say that we don't have much time. We have maybe 5 minutes or 10 minutes in a daily basis. But yoga is also something which does not require an expensive gym subscription or big equipment. All it requires is one mat and maybe a yoga instructor and you're good to go. But tell us and all of you about any one asana which can be done, you know, within a very short period of time, but its effect is paramount. It's a lot. Its effects really fast. What could that be?
3: I would suggest they can practice Surya Namaskara. There are 12 postures in the whole series. So everything is added in the Surya Namaskara, like back bending, forward bending, and twisting. Yes. Every muscle gets stretched in the Surya Namaskara. Your back, your leg muscles. So yeah, everyone can practice Surya Namaskar on daily basis. Just one or two rounds if they don't have time. Hmm. Yeah.
0: So this asana, what we're doing is good for the back and for your lower back as well.
3: And for your hip opening.
0: Okay.
3: It opens your inner thighs. Hmm. Yes. Now we can relax. Just relax your legs. Okay. Now next we'll be doing Vajrasana. You have to fold your legs and sit down on your heels and place both the hands on your knees. So this is Vajrasana. This is the only asana that we can practice after eating.
0: Eating food also.
3: Yes, yes. This is very good for...
0: We're cutting across life.
4: Ravi ji, Urjavan Mukhyamantri, Shubhendu Adhikari ji, Kendra mein mere sahyogi, प्रताप राव जाधव जी अन्य सभी महानुभाव यहां कोलकाता में जुटे सभी प्रतिभागी देश विदेश में योग से जुड़ रहे सभी साथी और मेरे प्यारे देशवासियों 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है विश्व के अलग-अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है पूरा देश पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है योग सबको जोड़ता है योग सबको साथ लाता है मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं साथियों आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में कोलकाता में यहां बने स्वच्छता के योग के

लिए भी कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा। ये अद्भुत पहल है, स्वच्छता से स्वागत। स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया है, नागरिक कर्तव्य निभाया गया है, वो सभी देशवासियों के लिए आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया है। साथियों, योग दिवस के अवसर पर आज बंगाल में होना बहुत ही विशेष है। बंगाल की ये पवित्र भूमि, जहां भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया, जहां से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को योग से परिचय कराया, जहां महर्षि अरविंद जैसे महान योगी ने जन्म

0: चिड़िया है आकाश में जाके उड़ते हैं। स्वीट लिटल सॉन्ग, बट गुजराती लाइन कि हमें नानी नानी चकलियो, चकली का मतलब वैसे तो मैंने कहा चिड़िया, बट अंग्रेजी में जो है चकली इज द स्पैरो। अम्मा चकली क्या होती है, राइट? चकली एक वो नमकीन भी होता है जो खाते हैं, उसको भी चकली कहते हैं। सो आई डोंट नीड टू टेल यू हाउ मच इट इज बीन एस्टैब्लिश्ड दैट म्यूजिक हैज सो मच टू डू विद ब्रिंगिंग अप योर चाइल्ड, विद चाइल्ड डेवलपमेंट, और यू कैन गिव इट मोर टेक्निकल टर्म्स, बट द बेसिक आइडिया इज संगीत का बच्चों के साथ एक बहुत बहुत गहरा रिश्ता है। इट्स अ ब्यूटिफुल डीप वेरी वेरी इलास्टिक रिलेशनशिप, उसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। सो वन ऑफ द थिंग्स दैट दे से, इफ आई वर टू लुक एट द स्लाइटली टेक्निकल साइड ऑफ इट, कि जो द वे द ब्रेन वर्क्स, बोथ द हेमिस्फीयर्स ऑफ द ब्रेन, अपेरेंटली आई एम नो साइंटिस्ट बट आई लव टू रीड अप ऑन दीज थिंग्स, दैट बोथ द हेमिस्फीयर्स ऑफ द ब्रेन अपेरेंटली रिलेट टू मेलोडी एंड रिदम इन वेज। जब आप बच्चों के साथ ये करते हैं, इट रिलेट्स इन वेज कि जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनका ऑल ये मैथ प्रॉब्लम सॉल्विंग, इट इवॉल्व्स इनटू दैट स्किल एज वेल। फॉर माय सन आई यूज्ड टू सिंग लड्डू के लाल, ही यूज्ड टू लव मिठाई, सो आई मेड अप दिस सॉन्ग लड्डू के लाल चमचम के शाम, ओके, एंड एवरी लाइन वुड हैव सम मिठाई का नाम। काजू की बर्फी हो तुम मेरे, हाँ लड्डू के लाल, जो आपका मन करता है और मज़े से आप गा सकते हो आप ज़रूर उसको गाएं। कई गानों में कहानियाँ होती हैं, कई गानों में शब्द होते हैं, कई गानों में कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जो भी है वो दिल को छूता है।
1: See, even these lovely flowers need a water break to feel fresh. So we also deserve one tiny break, and so does our audience, panelists, and our guests. So we'll be back in a few minutes while I catch a sip of water. So I'll be back.
2: President Trump, what about the import of Russian oil? Sanctions on the import of oil.
3: We are looking at that. We're seeing how far the price of oil comes down. It's really tumbling. It's, I guess, 74, 70.

0: केंद्र में मेरे सहयोगी प्रताप राव यादव जी, अन्य सभी महानुभाव, यहां कोलकाता में जुटे सभी प्रतिभागी, देश विदेश में योग से जुड़ रहे सभी साथी और मेरे प्यारे देशवासियों, 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में, कोलकाता में, यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा। ये अद्भुत पहल है, स्वच्छता से स्वागत। स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया है, नागरिक कर्तव्य निभाया गया है, वो सभी देशवासियों के लिए आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया है। साथियों, योग दिवस के अवसर पर आज बंगाल में होना बहुत ही विशेष है। बंगाल की ये पवित्र भूमि, जहां भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया, जहां से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को योग से परिचय कराया, जहां महर्षि अरविंद जैसे महान योगी ने जन्म लिया, लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने जहां योग परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा है। इसी बंगाल की धरती पर जन्मे गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का मानना था कि मनुष्य की पहचान अलग अलग रहने में नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में है। यही जुड़ाव योग का मूल भाव है। महर्षि अरविंद भी कहते थे, हमारा पूरा जीवन योग है, चाहे हमें इसका बोध हो या ना हो। योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है। साथियों, योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है, योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव के जीवन का चेतना के।
1: At NDTV, for the past several years, we have been running the campaign Child Marriage Free India, along with Just Rights for Children. Through this partnership, we have been bringing you stories about how India's children are being protected and rescued from a life of abuse and exploitation. We have been also been reporting on Bal Vivah Mukt Bharat, the nationwide movement led by Ministry of Women and Child Development. Today, we will be talking about how another battle is underway, where we are fighting a crisis which robs the childhood of lakhs of children every year, child labour. Last week on June 12th, the World Day Against Child Labour, the Uttar Pradesh government announced its mission to make a child labour free Uttar Pradesh by the year 2027. To talk more about why such concerted efforts across the country are needed to eliminate this crime, we are joined by Bhuvan Ribhu, child rights activist, advocate and founder Just Rights for Children. But before we begin this conversation, here's a look at what happened at the event and why this is a significant step for the Uttar Pradesh government.
2: Panchayat representatives, labor department officials, ministers, policy makers, administrators, law enforcement officials and other key stakeholders from across UP gathered to announce a critical mission: making Uttar Pradesh a child labour-free state by 2027. This program in Lucknow was organized on June 12th, which is World Day Against Child Labour, an apt day for Government of Uttar Pradesh to reaffirm its strong commitment to child protection.
3: Kai aisi jagahein hain jahan baal shram karaya jata tha jo pehle se chinhit thi, aisi jagahon ko baal shram se mukt kiya aur aaj ek saath 141 जगहों को भी बाल श्रम मुक्त किया गया, उसकी घोषणा आज के कार्यक्रम में हुई। 500 के आसपास अभी और भी ऐसे उत्तर प्रदेश में जगहें हैं जहां बाल श्रम कराए जाने की शिकायतें हम लोगों को मिली हैं। हमारा संकल्प है कि अगले चुनाव में जाने से पहले हम उत्तर प्रदेश को बाल श्रम से मुक्त कर देंगे। ये प्रदेश के लिए ही नहीं, देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आने वाले समय में बहुत जल्द उत्तर प्रदेश बाल श्रम मुक्त होगा।
2: चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट, एडवोकेट एंड फाउंडर ऑफ जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन भुवन रिभु वाज प्रेजेंट एज अ डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट एट द प्रोग्राम वेयर जेआरसी प्लेड एन इंटेग्रल रोल इन एडवांसिंग द शेयर्ड कमिटमेंट टुवर्ड्स एंडिंग चाइल्ड लेबर अलोंग विद द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। परहैप्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रेजेंस एट द इवेंट were the children who have been successfully rehabilitated and connected with various government welfare schemes. Their stories reinforced the hope that a childhood can be reclaimed and that every child can be provided education, protection and a future. Yet the scale of the challenge remains vast. As per the 2011 census, more than a crore of India's children remain trapped in labour, sometimes within the family, and a staggering number in hazardous industry such as brick kilns, fireworks manufacturing and even in mines.
4: बाल श्रम जो एक समस्या है वो सिर्फ एक सामाजिक समस्या नहीं है, ये एक सोसाइटी की एक बहुत रूट कॉज समस्या है, क्योंकि जैसा कहा जाता है कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल दैट वी कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। तो बच्चों को का समय होता है शिक्षा का, खेलने का, बच्चों का समय मासूमियत का होता है, उनको किसी भी प्रकार से श्रम में लगाना एक बहुत बड़ा सामाजिक पाप है। तो उसके लिए लीगल एक्शंस हैं, हमारा चाइल्ड

0: एजुकेशन एंड जॉय।
1: जब भी हम देखते हैं किसी भी बच्चे को ढाबे होटल खेत या कहीं भी और हमें लगता है 14 वर्ष से कम का है या 14 से 18 वर्ष में किसी खतरनाक क्षेत्र में काम करते हुए देखते हैं तुरंत हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। हम चाइल्ड हेल्पलाइन पे फ़ोन कर दें, हम कुछ नहीं तो 112 पे सूचित कर दें सबसे पहले, वो तो सबको पता होता है, और अपने श्रम विभाग के ऑफिस में जाके सूचित कर दें। जहाँ भी इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकें संबंधित सक्षम स्तर तक हम आवाज़ उठा दें ताकि दंडात्मक कार्रवाई की जा सके, बच्चों को रिहैबिलिटेट किया जा सके और उनके माता पिता को आर्थिक पुनर्वासन, जितनी भी सरकार की योजनाएं चलती हैं प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, राशन, इन सब से जोड़ा जाए ताकि बच्चों से काम करा के आर्थिक प्रतिपूर्ति ना कराई जाए।
0: The government of Uttar Pradesh has set the wheels of change in motion, leading from the front with resolve and a mission. But while a government can reinforce the law, it takes an entire society to protect a childhood. The fight against child labor doesn't happen in policy rooms. It happens in our neighborhoods, our marketplaces, and in our daily choices. When we choose to speak up, we protect the future.
2: So this is UP government's ambitious target. You have been working a lot on ground on this issue. Do you think it's a realistic target, achievable target? And how is this initiative different from what has been happening on ground previously?
3: Yeah, definitely achievable hai. और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त पॉलिटिकल विल है, पॉलिटिकल विल एट द सेंटर एज वेल एज पॉलिटिकल विल एट द स्टेट लेवल। जब दोनों स्तरों पर राजनीतिक नेतृत्व ये चाहता है कि हम गांव-गांव में काम करें, हम लॉज को ठीक तरीके से एनफोर्स करें, हम बच्चों को रिहैबिलिटेट करें, हम एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी के तहत सोर्स रूट डेस्टिनेशन तीनों को टारगेट करते हुए पूरे प्रदेश में एट स्केल काम करें तो ये डेफिनेटली अचीवेबल भी है और डूएबल भी है। और ख़ास तौर पे डिसाइसिव लीडरशिप कपल्ड विद इनिशिएटिव एंड एक्शंस ऑन द ग्राउंड कैन रियली डू वंडर्स। पिछले 3 सालों में हम लोगों ने, जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन ने उत्तर प्रदेश में 5,000 से ज़्यादा बच्चों को ट्रैफिकिंग से और बाल मजदूरी से मुक्त कराया है, 17,000 से ज़्यादा बाल विवाह रोके गए हैं। तो एक्शन तो लिया जा रहा है बच्चों की सुरक्षा पे, लेकिन वो कहीं कहीं स्पोरैडिक है। जैसे ही वो एट स्केल हो जाता है और पूरे उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से एक समग्र दृष्टिकोण के साथ उसको एनफोर्स किया जाता है तो डेफिनेटली पॉसिबल है।
2: भुवन जी, यू हैव बीन सेइंग दैट चाइल्ड लेबर इज नॉट मेयरली अ सोशल इशू, इट्स अ क्राइम। सो हाउ डू यू थिंक यूपी गवर्नमेंट कैन अचीव थ्रू एनफोर्समेंट, लॉ एंड ऑर्डर मैकेनिज्म एंड ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेशन?
3: Definitely, child labor is fast emerging as an organized economic crime. It is no longer a social justice issue. Child labor is existing on 3 separate different fronts. The first one is where children are working and they are living with their families. The second one is where a child is working as a laborer only in a factory or in a sweatshop and is working 14 to 16 hours a day. The third is where children are being trafficked for the purpose of both economic as well as sexual exploitation. अभी पिछले कुछ वर्षों में बच्चों को मजदूरी के नाम पे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैफिक करके लाके स्पा में, मसाज पार्लर में, ऑर्केस्ट्रा में, अलग अलग तरह के सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में भी धकेलने के केसेस सामने आए हैं। यहाँ तक कि घरेलू बाल मजदूरी की शिकार जो बच्चियाँ प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से महानगरों में लाई जा रही हैं, आसाम से, बंगाल से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, बिहार से, इवन उत्तर प्रदेश से, उन बच्चियों के साथ हर तरह का अब्यूज़ होता है और उनको ब्लैकमेल करके एक तरह से एक स्लेवरी में रखा जाता है ताकि वो वापस ना जा पाएँ। इन्हीं बच्चियों को ये भी फोर्स किया जा रहा है कि तुम वापस जाओ तो 2 बच्चियों को और लेके आओ, नहीं तो हम तुम्हारे फोटो वीडियो सर्कुलेट कर देंगे या तुम्हें हम पैसा नहीं देंगे, बकाया मजदूरी नहीं देंगे। इन दिस सिचुएशन दीज पीपल रिक्वायर द फोर्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ। ये ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल हैं, ये गरीबी की वजह से कोई बच्चा जो सिर्फ घर में से निकल के काम करके शाम को घर आ रहा है, ऐसा केस नहीं है। जो भी व्यक्ति बच्चे को लेके जाता है 1,000 किलोमीटर दूर, चाहे वो फैक्ट्री के नाम पे ले जा रहा हो, चाहे वो और किसी नाम पे ले जा रहा हो, प्लेसमेंट एजेंसी के, डोमेस्टिक लेबर के नाम पे ले जा रहा हो, वो सब का सब

0: तरह से स्लेवरी या गुलामी कराने के लिए ले जा रहे हैं और बच्चे हर तरह के अब्यूज़ का शिकार होते हैं। दिस रिक्वायर्स द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड डेटरेंस अप्रोच एट सोर्स ट्रांजिट एंड डेस्टिनेशन। दिस इज वाई द इनिशिएटिव बाई द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल।
1: We really need to understand, Bhuvan ji, how important is community ownership in eradicating this crime? Is it only government's job to eradicate this crime or the community, the society also has to pitch in?
0: बिल्कुल नहीं। किसी भी तरह के इस तरह की सामाजिक बुराई और अपराध को खत्म करने के लिए हम सबको साथ आना जरूरी है। This requires a whole of society and a whole of government approach. बच्चा न ऐसी जगह से निकल रहा है जहां वो इनविजिबल है, अदृश्य है, ना वो ऐसी जगह काम करता है जहां वो अदृश्य है। तो अगर गांव-गांव में हम पंचायत के स्तर पे ये उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं कि चाइल्ड वेलफेयर और प्रोटेक्शन कमेटी को एक्टिवेट कीजिए, पंचायतों को कहा जाए कि हर पंचायत में माइग्रेशन रजिस्टर होना चाहिए, जो भी किसी बच्चे को लेके जा रहा है उसकी डिटेल हो। जब भी कोई बच्चा स्कूल से ड्रॉप आउट होता है तो टीचर्स की और समाज की जिम्मेदारी है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की जिम्मेदारी है कि उसे वापस स्कूल में दाखिला दें। बचाव में ही सुरक्षा है, सुरक्षा में ही न्याय है और न्याय से ही बचाव संभव है। तो प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एंड प्रोसिक्यूशन एंड प्रोसिक्यूशन टू क्रिएट अ डेटरेंस फॉर प्रिवेंशन हैव टू वर्क साइमल्टेनियसली। पंचायतों की जिम्मेदारी सोर्स पे है, जहाँ पे समाज की भागीदारी सामने आती है। इसी तरह जहाँ बच्चा काम करता है वहाँ बच्चा नज़र आता है। हम महानगरों में देखते हैं, मॉल्स में 12-13 साल की बच्चियाँ अक्सर दिखती हैं 5-6 साल के बच्चों को का ध्यान रखते हुए। वो कोई आगे बढ़ के अगर उस पर उंगली उठाए और कहे ये अपराध है, प्लेसमेंट एजेंसीज़ को ये कहा जाए कि सरकार का तंत्र तो अपनी जगह काम कर रहा है लेकिन रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन भी नहीं बच्चे को रखने दे रही किसी जगह काम पे ये घरेलू बाल मजदूरी कराने के लिए। जिन ढाबों पे हम खाना खाते हैं वहाँ अगर हमें बच्चा सर्व करता है तो हम मना कर सकते हैं कि हम इस अपराध के भागीदार नहीं बनेंगे। तो ये समाज की और सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है, दोनों को साथ मिलके ही इसका खात्मा करना है, तभी ये खत्म हो पाएगी।
1: राइट, सो वी विल बी कंटिन्यूइंग दिस कन्वर्सेशन आफ्टर दिस क्विक शॉर्ट ब्रेक।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा,
5: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
6: Where the software engineer meets the cool UI UX designer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.
7: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life. The show that sets the prime time agenda.
8: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
7: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
9: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
10: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
11: Really?
10: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program. Let's do it. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
12: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
13: Yes. In today's day and age, a lot of people say that we don't have much time. We have maybe 5 minutes or 10 minutes in a daily basis. But yoga is also something which does not require an expensive gym subscription.
14: Yes.
13: Or big equipment. All it requires is one mat and maybe a yoga instructor and you're good to go. But tell us and all of you about any one asana which can be done, you know, within a very short period of time, but its effect is paramount. It's a lot. It's it affects really fast. What could that be?
4: I would suggest they can practice Surya Namaskara. There are 12 posture in the whole series. So everything is added in the Surya Namaskar, like back bending, forward bending, and twisting. Yes. Every muscle gets stretched in the Surya Namaskar. Your back, your leg muscles. So yeah, everyone can practice Surya Namaskar on daily basis. Just one or two rounds if they don't have time. Yeah.
13: So this asana, what we're doing is good for the back and for your lower back as well.
4: And for your hip opening.
13: Okay.
4: It opens your inner thighs. Yes. Now we can relax. Just relax your legs. Okay. Now next we'll be doing Vajrasana. You have to fold your legs and sit down on your heels and place both the hands on your knees. So this is Vajrasana. This is the only asana that we can practice after eating.
13: Eating food also.
4: Yes, okay. Yes. This is very
13: right,
4: good for...
13: We're cutting across life.
11: Ravi ji, Urjavan Mukhyamantri, Shubhendu Adhikari ji, Kendra mein mere sahyogi, Pratap Rao Jadav ji, anya sabhi mahanubhav, यहाँ कोलकाता में जुटे सभी प्रतिभागी देश विदेश में योग से जुड़ रहे सभी साथी और मेरे प्यारे देशवासियों 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है पूरा देश पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है योग सबको जोड़ता है योग सबको साथ लाता है मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं साथियों आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में कोलकाता में यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा ये अद्भुत पहल है स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया है नागरिक कर्तव्य निभाया गया है वो सभी देशवासियों के लिए आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया है साथियों योग दिवस के अवसर पर आज बंगाल में होना बहुत ही विशेष है। बंगाल की ये पवित्र भूमि जहां
1: वेलकम बैक टू दिस इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन विथ मी इज भुवन रिभू. भुवन जी, वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द नेशनल पर्सपेक्टिव व्हाट आर द बिगेस्ट ड्राइवर्स ऑफ चाइल्ड लेबर इन आर कंट्री राइट नाउ. इज इट पॉवर्टी, इज इट ट्रैफिकिंग, इज इट स्कूल ड्रॉप आउट, इज इट माइग्रेशन और ऑर्गेनाइज्ड एक्सप्लॉयटेशन नेटवर्क्स.
0: सबसे बड़ी वजह तो इसकी है लैक ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ लॉ. पीपल इन द वर्ल्ड विल डू वॉट एवर दे कैन गेट अवे विद. अगर अपराध के ऊपर अंकुश नहीं लगेगा तो अपराधी स्वच्छंद रूप से पूरे देश में विचरण करेंगे, वो घूमेंगे. और जिस अपराध को अपराध माना ही नहीं जाएगा वो तो अपराध फिर पनपेगा ही. बाल मजदूरी जैसे जघन्य अपराध के साथ दरअसल यही हुआ है. पिछले इतने वर्षों में अब पहली बार इसको एक आपराधिक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है और BNS में पहली बार ट्रैफिकिंग को एक ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमिक क्राइम की तरह हम लोगों ने समझा है. इनफैक्ट ट्रैफिकिंग के ऊपर कानून भी बहुत नया है. लगभग 12 साल पहले 2013 में ही निर्भया के पूरे जो जघन्य रेप का कांड था उसके बाद ये जो कानून में बदलाव आए उसके बाद ट्रैफिकिंग का लॉ बना. तो गरीबी एक समस्या है. गरीबी की वजह से बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट होते हैं, उससे वनरेबिलिटी क्रिएट होती है, जिस वनरेबिलिटी का फ़ायदा ट्रैफिकर उठाता है. ट्रैफिकर उस बच्चे को लेके गांव से निकलता है और कहीं बेच देता है जहां माता पिता को पता नहीं है कि वो बच्चा कहां है. वो मिसिंग चाइल्ड है, वो ट्रैफिक चाइल्ड है, वो अब्यूज्ड और एक्सप्लॉयटेड चाइल्ड है. वो एक जगह से दूसरी जगह जब आता है तो किडनैपिंग का, एबडक्शन का, सेल का, परचेज का, ट्रैफिकिंग का, मल्टीपल अपराधों का शिकार होता है. और अंततः ये चूंकि हम उसको डेटरेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे तो जब तक डिमांड बढ़ती रहेगी, लोग मांगते रहेंगे तो बच्चा, और बच्चा काम क्यों कर रहा है? गरीबी की वजह से ही बच्चा काम नहीं करता. बच्चा सस्ता मजदूर है इसलिए बच्चे को काम पे लगाया जाता है. देखिए गरीबी क्यों है. माता पिता गरीब इसलिए हैं क्योंकि उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही. उन्हें न्यूनतम मजदूरी देने वाला आदमी उन्हीं के बच्चे को 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये हफ्ते पे मजदूरी देने तैयार है क्योंकि बच्चा सस्ता मजदूर है. तो ये एक दुष्चक्र है, एक विशियस सर्कल है जिसको तोड़ने का एकमात्र जरिया यही है दैट वी कॉम्बैट इट विद एन सिस्टमैटिक एंड सिस्टमिक अप्रोच ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. एक तरफ डेटरेंस क्रिएट किया जाए ताकि डिमांड ख़त्म हो, दूसरी तरफ सप्लाई एंड पे पंचायतों पे गांव-गांव में काम किया जाए ताकि इस तरह के मॉडल बने. अभी हम उत्तर प्रदेश में सरकार के साथ मिलके, नीति आयोग के साथ मिलके 20,000 सुरक्षित बाल ग्राम बना रहे हैं जो कि ऐसे मॉडल विलेज होंगे जहां कोई बच्चा पलायन या माइग्रेशन नहीं करेगा बगैर पूरी डिटेल के कि किसके साथ कहां जा रहा है और क्यों. कोई बच्चा अगर स्कूल से ड्रॉप आउट करता है तो उसे या तो स्कूल से दोबारा जोड़ा जाएगा या स्किल से जोड़ा जाएगा, या उसके परिवार में अगर इस तरह की समस्या है, गरीबी है, तो उसे किसी सरकारी योजना से जोड़ा जाएगा, चाहे स्कॉलरशिप से, चाहे और पेंशन से, दूसरी चीज़ों से. चाइल्ड वेलफेयर और प्रोटेक्शन कमेटी जो एक मिशन वात्सल्य का पार्ट है उसको बनवाया जाएगा और स्ट्रेंथन किया जाएगा ताकि बच्चे किसी भी तरह के अपराध के या किसी भी तरह की सामाजिक बुराई के शिकार ना हो. वी सेव वन जनरेशन एंड दैट जनरेशन विल सेव ऑल द अदर जनरेशन टू फॉलो. विद दैट बिलीफ वी वॉन्ट टू सेव टूडेज जनरेशन.
1: Right. Friday's event was also attended by a large number of dignitaries who pledged their support and commitment to a child labor free Uttar Pradesh. Also present at the event was a large crowd of concerned citizens, parents and stakeholders from the ecosystem of child protection. This is what they had to say.
14: कानून तो है, इसके साथ-साथ अपने-अपने मन में एक संवेदनशीलता आना है. कोई हम देख रहे हैं किसी रेस्टोरेंट में खाने जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में हम देख रहे हैं ये बाल श्रमिक है, हमको पता है वो 10 साल का, 11 साल का, नहीं तो 8 साल के लड़का है, लड़की है. और तुरंत उनसे पूछना चाहिए, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए भी इतना कदम तो उठाना चाहिए. ऐसा नहीं है, ये हमारा काम नहीं है, इस पर हर करके वो किनारे करते हुए नहीं जाना चाहिए. नहीं निकलना चाहिए, कम से कम पूछना चाहिए, जानकारी वहाँ पे पुलिस स्टेशन को देना चाहिए, नहीं तो श्रम विभाग को देना चाहिए, सो हमारा अधिकारी जाके उनको छुड़वा सकते हैं। इस प्रकार एक समुदाय में हम एक हर नागरिक का एक जिम्मेदारी है, ये बड़ी जिम्मेदारी नहीं है।
15: मैं समझता हूँ कि आज जो उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा

0: यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका कारण यह है कि देखिए, बाल श्रम एक समाज के लिए अभिशाप तो है ही, और किसी भी इस प्रकार की कुव्यवस्था को निवारण करने के लिए अत्यंत आवश्यक यह होता है कि हम सरकार की प्रतिबद्धता के लिए कानूनों का कठोरतापूर्वक पालन तो अवश्य कराएं, किंतु जो जन जागरूकता है वो किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, किसी भी कुप्रथा को समाप्त करने के लिए एक बहुत बड़ा काम करती है। इस प्रकार के आयोजनों से जो सामाजिक चेतना फैलती है, इस प्रकार के आयोजनों से जो समाज में जागरूकता फैलती है, उसका बहुत बड़ी भूमिका है।
1: How important is rehabilitation in eradicating child labor?
2: बिल्कुल, रिहैबिलिटेशन के बिना तो ये पूरी की पूरी जो हमारी मुहिम है वो व्यर्थ हो जाएगी। रिहैबिलिटेशन का भी एक पूरा एक चेन है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मोमेंट ऑफ रेस्क्यू। जिस वक्त आप बच्चे को रेस्क्यू करते हैं, उसी वक्त से रिहैबिलिटेशन की यात्रा या जर्नी शुरू होती है, एंड इट मस्ट एंड इन द रीइंटीग्रेशन ऑफ द चाइल्ड इनटू मेनस्ट्रीम सोसाइटी। तो यदि हम ये सोचें एक मिनट के लिए कि बच्चे की उस पूरी यात्रा में क्या क्या होना है, तो पहले वी हैव टू इंश्योर दैट देर इज़ नो रिविक्टिमाइजेशन। ऐसा तो नहीं कि बच्चे को हमने एक तरह के एक्सप्लॉयटेशन से निकाला और दूसरी तरह के एक्सप्लॉयटेशन में जोड़ दिया, या वो फिर दोबारा रीट्रैफिक हो गया। बच्चा जिन हालात से निकला था, यदि हमने उन हालात को कॉम्बैट नहीं किया, तो वो तो फिर ट्रैफिक हो जाएगा। दूसरा, बच्चों की रिहैबिलिटेशन में बच्चों की भागीदारी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बच्चा ही बता सकता है कि वो पूरी चेन क्या थी एक्सप्लॉयटेशन की। अगर किसी बच्चे को, मान लीजिए, भुवन रिभु लेके निकला और भुवन रिभु ने वो आपको दे दिया, आपने किसी और को दे दिया, किसी और ने किसी और को दे दिया, ये बात सिर्फ भुवन रिभु जानता है, और वो सॉरी बच्चा जानता है और कोई नहीं जानता। तो बच्चे को ये भी सम्मिलित करना है, उससे पूछना है कि बेटा तुम्हें कौन कौन ट्रैफिकिंग में शामिल किया था, उस सब का नाम बताओ, ताकि हम उस पूरी चेन को आइडेंटिफाई करके जो डेटरेंस है, जो कानूनी प्रहार है, वो पूरी चेन पे कर सकें। दूसरा, तुम काम किसके लिए करते थे। टू कॉम्बैट ट्रैफिकिंग एज एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑन वन साइड वी लुक बीनीथ द सर्फेस एंड ऑन द अदर वी फॉलो द मनी। तो हमें बच्चे को सेंटर में रखते हुए उसकी पूरी यात्रा की, वो एक्सप्लॉयटेशन की जगह पे आया कैसे था, और जहाँ एक्सप्लॉयट हो रहा था वहाँ से उसका जो पैसा था या गुड्स थे या सर्विसेज थे वो कहाँ जा रहे थे, उस सबको मैप करके उस सबको कॉम्बैट करने की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ बच्चे को शिक्षा से, बच्चे को स्किल से, और बच्चे को सरकारी योजनाओं से जोड़ना ज़रूरी है। इसके साथ साथ मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, ट्रॉमा काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, और एक पूरे इस रिहैबिलिटेशन फ्रेमवर्क की ज़रूरत है। जब मैं आपको कह रहा था कि 1,00,000 बच्चों के रिहैबिलिटेशन का हम इस साल बीड़ा उठाए हैं, तो उसके पीछे की सोच यही है कि इन बच्चों के रिहैबिलिटेशन से भारत में पुनर्वास की एक नई दिशा, एक नई तरह की सोच जन्म लेगी।
1: वन लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू यू इज, इफ यूपी गवर्नमेंट मैनेजेस टू अचीव इट्स टारगेट, विल इट बी द रोल मॉडल स्टेट फॉर द एंटायर कंट्री?
2: आई थिंक नॉट। इट विल बिकम द मॉडल स्टेट फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देर इज नो स्टेट एज पॉपुलस। यूपी की तो पॉपुलेशन, यूपी हैज़ अ पॉपुलेशन मोर देन ओवर 100 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। So UP will become a model for the rest of the world, also because UP is a source, it is a transit point as well as a destination. UP has international borders, UP has interstate and international trafficking. So UP has all sorts of these issues. Despite that, with decisive leadership, with actions on the ground, with panchayat's participation, with multi-stakeholder collaboration and this whole of government and whole of society approach, if UP manages to combat and eradicate child labor and trafficking, UP will become a model for the world that the end of child labor is possible. The world has missed the Sustainable Development Goal deadline of 2025 because nowhere in the world people have been able to actually work at scale and with this sort of cohesiveness. So therefore, I believe UP has taken upon itself one of the biggest responsibilities also to showcase India as the nation which is the model for child protection for the entire world.
1: Thank you so much for speaking to us. So as India is set to achieve its goal of eradicating child labor from every state, initiatives by state and central government, along with the

0: on-ground efforts by Just Rights for Children are helping to turn this dream into reality. And our network will continue to bring you more stories about this grave crisis and what India is doing to fight it.
1: Yes. In today's day and age, a lot of people say that we don't have much time. We have maybe 5 minutes or 10 minutes in a daily basis. But yoga is also something which does not require an expensive gym subscription or big equipment. All it requires is one mat and maybe a yoga instructor and you're good to go. But tell us and all of you about any one asana which can be done, you know, within a very short period of time, but its effect is paramount. It's a lot. It affects really fast. What could that be?
2: I would suggest they can practice Surya Namaskara. There are 12 postures in the whole series. So everything is added in the Surya Namaskara, like back bending, forward bending, and twisting. Yes. Every muscle gets stretched in the Surya Namaskara. Your back, your leg muscles. So yeah, everyone can practice Surya Namaskar on daily basis. Just one or two rounds if they don't have time. Yeah.
1: So this asana, what we're doing is good for the back and for your lower back as well.
2: And for your hip opening.
1: Okay.
2: It opens your inner thighs. Yes. Now we can relax. Just relax your legs. Okay. Now next we'll be doing Vajrasana. You have to fold your legs and sit down on your heels and place both the hands on your knees. So this is Vajrasana. This is the only asana that we can practice after eating.
1: Eating food also.
2: Yes, yes. This is very good for...
1: We're cutting across life.
3: Ravi ji, Urjavan Mukhyamantri, Shubhendu Adhikari ji, Kendra mein mere sahyogi, प्रताप राव जाधव जी अन्य सभी महानुभाव यहां कोलकाता में जुटे सभी प्रतिभागी देश विदेश में योग से जुड़ रहे सभी साथी और मेरे प्यारे देशवासियों 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है विश्व के अलग-अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है पूरा देश पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है योग सबको जोड़ता है योग सबको साथ लाता है मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं साथियों आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में कोलकाता में यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी कोलकाता वासियों की सराहना

0: where the software engineer meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद ये हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
3: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
4: Yes. In today's day and age, a lot of people say that we don't have much time. We have maybe 5 minutes or 10 minutes in a daily basis. But yoga is also something which does not require an expensive gym subscription
1: yes.
4: or big
1: yes.
4: equipment. All it requires is one mat. And maybe a yoga instructor and you're good to go. But tell us and all of you about any one asana which can be done, you know, within a very short period of time. But its effect is paramount. It's a lot. It's effects really fast. What could that be?
5: I would suggest they can practice Surya Namaskara. There are 12 postures in the whole series. So everything is added in the Surya Namaskara, like back bending, forward bending, and twisting, yes. Every muscle gets stretched in the Surya Namaskar. Your back, your leg muscles. So yeah, everyone can practice Surya Namaskar on daily basis. Just one or two rounds if they don't have time. Yeah.
4: So this asana, what we're doing is good this for the back and for your lower back as well.
5: And for your hip opening.
4: Okay.
5: It opens your inner thighs, yes. Now we can relax. Just relax your legs. Okay. Now next we'll be doing Vajrasana. You have to fold your legs and sit down on your heels and place both the hands on your knees. So this is Vajrasana. This is the only asana that we can practice after eating.
4: Eating food also.
5: Yes, yes. This is very
4: right,
5: good for...
4: We're cutting across life.
6: Ravi ji, Urjavan Mukhyamantri, शुभेंदु अधिकारी जी, केंद्र में मेरे सहयोगी प्रताप राव जाधव जी, अन्य सभी महानुभाव, यह कोलकाता में जुटे सभी प्रतिभागी, देश विदेश में योग से जुड़ रहे सभी साथी और मेरे प्यारे देशवासियों, 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही है। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में, कोलकाता में, यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा। ये अद्भुत पहल है, स्वच्छता से स्वागत। स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया है, नागरिक कर्तव्य निभाया गया है, वो सभी देशवासियों के लिए आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया है। साथियों, योग दिवस के अवसर पर आज बंगाल में होना बहुत ही विशेष है। बंगाल की ये पवित्र भूमि जहां भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया, जहां से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को योग से परिचय कराया, जहां महर्षि अरविंद जैसे महान योगी ने जन्म लिया, लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने जहां योग परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा है। इसी बंगाल की धरती पर

0: केंद्र में मेरे सहयोगी प्रताप राव जाधव जी, अन्य सभी महानुभाव, यहां कोलकाता में जुटे सभी प्रतिभागी, देश विदेश में योग से जुड़ रहे सभी साथी और मेरे प्यारे देशवासियों, 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में, कोलकाता में, यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा। ये अद्भुत पहल है, स्वच्छता से स्वागत। स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया है, नागरिक कर्तव्य निभाया गया है, वो सभी देशवासियों के लिए आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया है। साथियों, योग दिवस के अवसर पर आज बंगाल में होना बहुत ही विशेष है। बंगाल की ये पवित्र भूमि, जहां भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया, जहां से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को।
1: Good evening, hello and welcome. You're watching NETV 24/7. I'm Anusha Soni. A quick check of the headlines first. More than 22 lakh medical aspirants are appearing for the re-NEET examination, making it one of the biggest tests not just for students but also for the NTA. Heavy security measures are in place after the controversy that rocked the original exam. All eyes are now on whether the exam can restore trust, ensure a fair, transparent and an error-free process. As the world marks International Yoga Day 2026, millions across continents are coming together on the mat to celebrate India's ancient gift to humanity. From mass yoga sessions in capitals around the globe to Prime Minister Modi leading the celebrations in India. India's maritime capabilities get a major boost. boost, with Prime Minister Modi commissioning three new naval ships in Kolkata. The induction of INS Unagiri, INS Sanshodhak and INS Agre marks another significant step in strengthening the country's self-reliant defence ecosystem. The battle within Shiv Sena is entering a crucial phase. Uddhav Thackeray has called a key meeting that could determine the future course of action against rebel MPs, with reports suggesting disciplinary measures and possible disqualification moves under consideration. And diplomatic efforts to ease tensions in West Asia continue as Vance and Iranian delegation led by Ghalibaf are in Switzerland for peace talks. While both sides signal a willingness to keep negotiations alive, concerns over regional security, including developments surrounding the Strait of Hormuz, continue to cast a shadow over the discussions.

0: विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में, कोलकाता में, यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा। ये अद्भुत पहल है, स्वच्छता से स्वागत। स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया है, नागरिक कर्तव्य निभाया गया है, वो सभी देशवासियों के लिए आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया है। साथियों, योग दिवस के अवसर पर आज बंगाल में होना बहुत ही विशेष है। बंगाल की ये पवित्र भूमि, जहां भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया, जहां से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को योग से परिचय कराया, जहां महर्षि अरविंद जैसे महान योगी ने जन्म लिया, लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने जहां योग परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा है। इसी बंगाल की धरती पर जन्मे गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का मानना था कि मनुष्य की पहचान अलग अलग रहने में नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में है। यही जुड़ाव योग का मूल भाव है। महर्षि अरविंद भी कहते थे, हमारा पूरा जीवन योग है, चाहे हमें इसका बोध हो या ना हो। योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है। साथियों, योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है। योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं योग मानव जीवन के जीवन का चेतना के साथ ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए
1: You're watching India Sense. I'm Gauri Dwivedi. Let's get you the big headlines that we have curated for you this week. First up, a massive diplomatic humiliation for Islamabad as Pakistan's Swiss summit is abruptly cancelled after a historic US-Iran peace deal was signed digitally, exposing Pakistan's shrinking global footprint comes as India continues to rise. We break down the stark geopolitical shifts that are taking place right now. New Delhi locks down. This Monday, India hosts the high-stakes BRICS Security Summit, aiming to cool China border tensions and lead the global south. Buyers from around the world swarm India's pavilion at Eurosatory 2026 as defense exports explode by 62%. Major shot in the arm for Atmanirbhar defense push. New York Times claims Shivaji Maharaj's legacy is a modern political invention, but historical facts completely blow this narrative out of the water. And India's biggest IPO is officially here. The NSE has filed for a massive 30,000 crore rupee listing, shaking Dalal Street. We decode what's in it

0: 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। Our target must be to be more energetic at 50 than we were at 30. Our target must be to be more resistant to lifestyle disease at 70 than we were at 50. This is where yoga can help us. It helps us tune our bodies to be flexible. It keeps our energy level high. It also helps us maintain a calm, stress-free life and help to keep lifestyle disease away. Moreover, with regular practice, yoga teaches us to remain lifelong learners of our own bodies and minds. The more we know about ourselves, the better we can manage ourselves. That is why yoga for healthy aging, this theme must be seen as one for people of all ages, not just for the elderly.
1: हम सब आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को वैश्विक मान्यता देकर के भारत के लोगों को, 140 करोड़ भारतवासियों को दुनिया के अंदर गौरव के साथ आगे बढ़ने और उसकी नींव पर एक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हम सब के लिए एक विजन प्रस्तुत किया है।
2: योग दिवस के अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। योग का जहां तक प्रश्न है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से यदि हम अपने को स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं तो नित्य योग क्रिया करना यह बहुत ही आवश्यक है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब यह योग की क्रियाएं की जाती हैं और इसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने कि संयुक्त राष्ट्र संघ में इस प्रस्ताव को पारित कराया और सहज रूप से सभी ने

0: उसको स्वीकार।
1: इस बार का जो थीम है वो है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। वैसे तो योग हर अवस्था में, हर उम्र में उसका अपना योगदान है, लेकिन एजिंग लोगों के लिए विशेष करके उनकी एजिलिटी बनी रहे, उनका कॉन्शियसनेस बना रहे, उनका सब तरीके से शारीरिक अवस्था अच्छी रहे, मानसिक अवस्था अच्छी रहे, इसको लेकर के योगा फॉर हेल्दी एजिंग, इसको प्रमोट करने के लिए योगा का थीम रखा गया है।
2: योग को अपनी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बनाए हम सब। योग से ही जीवन के सारे रोग दूर हो सकते हैं और साथ ही साथ जीवन जीने की एक पद्धति बन सकती है योग। ऐसा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व भर में योग को एक नया स्थान दिखाया है। आप देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत भारत की संस्कृति को विश्व के पटल पर पहुंचाया था। एक बहुत बड़ा वो एक लैंडमार्क इवेंट था भारत के इतिहास में। वैसा ही योग को एक विश्व भर में एक नया स्थान देना, भारत की संस्कृति को स्वामी विवेकानंद जी के बाद में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व पटल पर पहुंचाया है, ये हम सब आज उसी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए
3: चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो योग को अपनाएं। योग जो है जस्ट कीप्स यू सो बैलेंस्ड एंड सो फोकस्ड, और एक यू विल फील वेरी पॉजिटिव एज वेल व्हेन यू टेक अप योगा। कंसिस्टेंसी के बिना और डिसिप्लिन के बिना आप ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि योग जो है वो इंडिया को बिलोंग करता है और वेस्टर्नर्स अपना रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ठान लिया है कि योग को वो इम्पोर्टेंस देंगे और योग को आज ये जो अहमियत दी जा रही है वो उनकी बदौलत है।
4: आई थिंक फिट रहने के लिए कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। जो भी आप करते हो उसे डेली बेसिस पे करना बहुत ज़रूरी है। योगा डे एस्टैब्लिश होने से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक बात ज़रूर कह दी दुनिया को कि ये हमारा था, हमारा है और हमेशा हमारा रहेगा। हम यहाँ से योगा को हर चीज़ गोरे हमें हर चीज़ यहाँ से लेकर जाते हैं, उसको सिर्फ अच्छी पैकिंग करके दोबारा वापस लेके आते।
5: फिटनेस starts with your self, you know, अगर आप fitness में believe करते हैं तो mentally fit होना बहुत ज़रूरी है, एक किस्म का discipline होना बहुत ज़रूरी है और yoga जो है वो चीज़ आपको सिखाती है।
6: And Prime Minister Narendra Modi commissioned 3 indigenously built frontline Indian Navy platforms, Dunagiri, Sanshodhak and Agra in Kolkata today, marking a major milestone in India's maritime and defence capabilities. He underscored the importance of Atmanirbharta, saying a strong navy is vital for national development and maritime security. He said that the induction marks a major boost to India's maritime capabilities and defence self-reliance. The platforms include Dunagiri, an advanced stealth frigate, Sanshodhak, a large survey vessel, and Agra, an anti-submarine warfare shallow watercraft. The construction of the 3 platforms saw extensive participation from Indian industry, including 200 MSMEs, and generated substantial direct and indirect employment across the country. And Mumbai witnessed a glittering gathering of political leaders, business tycoons, Bollywood celebrities as the wedding celebration of NCP SP MP Supriya Sule's daughter Revati Sule unfolded over 2 lavish days. The star-studded festivities saw the presence of some of the biggest names from across the country, including Amitabh Bachchan, Rahul Gandhi, Akhilesh Yadav, DK Shivakumar, Bhagwant Mann and RSS chief Mohan Bhagwat. Actor Shah Rukh Khan added his trademark charm to Lok Sabha MP Supriya Sule's daughter Revati's pre-wedding festivity. Revati, an alumna of the London School of Economics, tied the knot with Sarang Lakhani, who is from the Columbia Business School and the son of businessman and politician Arun Lakhani.

0: 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। Our target must be to be more energetic at 50 than we were at 30. Our target must be to be more resistant to lifestyle disease at 70 than we were at 50. This is where yoga can help us. It helps us tune our bodies to be flexible. It keeps our energy level high. It also helps us maintain a calm, stress-free life and help to keep lifestyle disease away. Moreover, with regular practice, yoga teaches us to remain lifelong learners of our own bodies and minds. The more we know about ourselves, the better we can manage ourselves. That is why yoga for healthy aging, this theme must be seen as one for people of all ages, not just for the elderly.
1: हम सब आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को वैश्विक मान्यता देकर के भारत के लोगों को, 140 करोड़ भारतवासियों को दुनिया के अंदर

0: पर गौरव के साथ आगे बढ़ने और उसकी नींव पर एक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हम सबके लिए एक विजन प्रस्तुत किया है।
1: योग दिवस के अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। योग का जहां तक प्रश्न है, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से यदि हम अपने को स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं तो नित्य योग क्रिया करना यह बहुत ही आवश्यक है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब यह योग की क्रियाएं की जाती हैं और इसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने कि संयुक्त राष्ट्र संघ में इस प्रस्ताव को पारित कराया और सहज रूप से सभी ने इसको स्वीकार।
2: इस बार का जो थीम है वो है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। वैसे तो योग हर अवस्था में हर उम्र में उसका अपना योगदान है, लेकिन एजिंग लोगों के लिए विशेष करके उनकी एजिलिटी बनी रहे, उनका कॉन्शियसनेस बना रहे, उनका सब तरीके से शारीरिक अवस्था अच्छी रहे, मानसिक अवस्था अच्छी रहे, इसको लेकर के योगा फॉर हेल्दी एजिंग इसको प्रमोट करने के लिए योगा का थीम रखा गया है।
3: योग को अपनी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बनाए हम सब। योग से ही जीवन के सारे रोग दूर हो सकते हैं और साथ ही साथ जीवन जीने की एक पद्धति बन सकती है योग। ऐसा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व भर में योग को एक नया स्थान दिखाया है। आप देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत भारत की संस्कृति को विश्व के पटल पर पहुंचाया था। एक बहुत बड़ा वो एक लैंडमार्क इवेंट था भारत के इतिहास में। वैसा ही योग को एक विश्व भर में एक नया स्थान देना, भारत की संस्कृति को स्वामी विवेकानंद जी के बाद में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व पटल पे पहुंचाया है, ये हम सब आज उसी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए।
4: मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो योग को अपनाएं। योग जो है जस्ट कीप्स यू सो बैलेंस्ड एंड सो फोकस्ड और एक यू विल फील वेरी पॉजिटिव एज वेल when you take up yoga. Consistency के बिना और discipline के बिना आप ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि योग जो है वो इंडिया को बिलोंग करता है और वेस्टर्नर्स अपना रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ठान लिया है कि योग को वो इम्पोर्टेंस देंगे और योग को आज ये जो अहमियत दी जा रही है वो उनकी बदौलत है।
5: आई थिंक फिट रहने के लिए कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। जो भी आप करते हो उसे डेली बेसिस पे करना बहुत ज़रूरी है। योगा डे एस्टैब्लिश होने से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक बात ज़रूर कह दी दुनिया को कि ये हमारा था, हमारा है और हमेशा हमारा रहेगा। हम यहाँ से योगा को हर चीज़ गोरे हमें हर चीज़ यहाँ से लेकर जाते हैं, उसको सिर्फ अच्छी पैकिंग करके दोबारा वापस लेके आते।
6: फिटनेस स्टार्ट्स विथ योर सेल्फ। यू नो, अगर आप फिटनेस में बिलीव करते हैं तो मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है, एक किस्म का डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है और योगा जो है वो चीज़ आपको सिखाती है।
7: And Prime Minister Narendra Modi commissioned 3 indigenously built frontline Indian Navy platforms, Dunagiri, Sanshodhak and Agre, in Kolkata today, marking a major milestone in India's maritime and defence capabilities. He underscored the importance of Atmanirbharta, saying a strong Navy is vital for national development and maritime security. He said that the induction marks a major boost to India's maritime capabilities and defence self-reliance. The platforms include Dunagiri, an advanced stealth frigate, Sanshodhak, a large survey vessel, and Agre, an anti-submarine warfare shallow watercraft. The construction of the 3 platforms saw extensive participation from Indian industry, including 200 MSMEs, and generated substantial direct and indirect employment across the country. And Mumbai witnessed a glittering gathering of political

21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। Our target must be to be more energetic at 50 than we were at 30. Our target must be to be more resistant to lifestyle disease at 70 than we were at 50. This is where yoga can help us. It helps us tune our bodies to be flexible. It keeps our energy level high. It also helps us maintain a calm, stress-free life and help to keep lifestyle disease away. Moreover, with regular practice, yoga teaches us to remain lifelong learners of our own bodies and minds. The more we know about ourselves,

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने की संयुक्त राष्ट्र संघ में इस प्रस्ताव को पारित कराया और
1: सहलिए योगा का थीम रखा गया है।
2: योग को अपनी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बनाया हम सब, योग से ही जीवन के सारे रोग दूर हो सकते हैं और साथ ही साथ जीवन जीने की एक पद्धति बन सकती है योग, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व भर में योग को एक नया स्थान दिखाया है। आप देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत भारत की संस्कृति को विश्व के पटल पर पहुंचाया था, एक बहुत बड़ा वो एक लैंडमार्क इवेंट था भारत के इतिहास में, वैसा ही योग को एक विश्व भर में एक नया स्थान देना, भारत की संस्कृति को स्वामी विवेकानंद जी के बाद में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व पटल पे पहुंचाया है, ये हम सब आज उसी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के
3: लिए चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो योग को अपनाएं। योग जो है जस्ट कीप्स यू सो बैलेंस्ड एंड सो फोकस्ड, और एक यू विल फील वेरी पॉजिटिव एज वेल when you take up yoga. Consistency के बिना और discipline के बिना आप ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि योग जो है वो इंडिया को बिलोंग करता है और वेस्टर्नर्स अपना रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ठान लिया है कि योग को वो इम्पोर्टेंस देंगे और योग को आज ये जो अहमियत दी जा रही है वो उनकी बदौलत है।
4: आई थिंक फिट रहने के लिए कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है, जो भी आप करते हो उसे डेली बेसिस पे करना बहुत ज़रूरी है। योगा डे एस्टैब्लिश होने से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक बात ज़रूर कह दी दुनिया को कि ये हमारा था, हमारा है और हमेशा हमारा रहेगा। हम यहाँ से योगा को हर चीज़ गोरे हमें हर चीज़ यहाँ से लेकर जाते हैं, उसको सिर्फ अच्छी पैकिंग करके दोबारा वापस लेके आते।
5: फिटनेस स्टार्ट्स विथ योर सेल्फ, यू नो, अगर आप फिटनेस में बिलीव करते हैं तो मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है, एक किस्म का डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है और योगा जो है वो चीज़ आपको सिखाती है।
6: And Prime Minister Narendra Modi commissioned 3 indigenously built frontline Indian Navy platforms, Dunagiri, Sanshodhak and Agre in Kolkata today, marking a major milestone in India's maritime and defence capabilities. He underscored the importance of Atmanirbharta, saying a strong Navy is vital for national development and maritime security. He said that the induction marks a major boost to India's maritime capabilities and defence self-reliance. The platforms include Dunagiri, an advanced stealth frigate, Sanshodhak, a large survey vessel, and Agre, an anti-submarine warfare shallow water craft. The construction of the 3 platforms saw extensive participation from Indian industry, including 200 MSMEs, and generated substantial direct and indirect employment across the country. And Mumbai witnessed a glittering gathering of political leaders, business tycoons, Bollywood celebrities as the wedding celebration of NCP SP MP Supriya Sule's daughter Revati Sule unfolded over 2 lavish days. The star-studded festivities saw the presence of some of the biggest names from across the country, including Amitabh Bachchan, Rahul Gandhi, Akhilesh Yadav, DK Shivakumar, Bhagwant Mann and RSS chief Mohan Bhagwat. Actor Shah Rukh Khan added his trademark charm to Lok Sabha MP Supriya Sule's daughter Revati's pre-wedding festivity. Revati, an alumna of the London School of Economics, tied the knot with Sarang Lakhani, who is from the Columbia Business School and the son of businessman and politician Arun Lakhani.

0: 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। Our target must be to be more energetic at 50 than we were at 30. Our target must be to be more resistant to lifestyle disease at 70 than we were at 50. This is where yoga can help us. It helps us tune our bodies to be flexible. It keeps our energy level high. It also helps us maintain a calm, stress-free life and help to keep lifestyle disease away. Moreover, with regular practice, yoga teaches us to remain lifelong learners of our own bodies and minds. The more we know about ourselves, the better we can manage ourselves. That is why yoga for healthy aging, this theme must be seen as one for people of all ages, not just for the elderly.
1: हम सब आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को वैश्विक मान्यता देकर के भारत के लोगों को, 140 करोड़ भारतवासियों को दुनिया के अंदर गौरव के साथ आगे बढ़ने और उसकी नींव पर एक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हम सब के लिए एक विजन प्रस्तुत किया है।
2: योग दिवस के अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। योग का जहां तक प्रश्न है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से यदि हम अपने को स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं तो नित्य योग क्रिया करना यह बहुत ही आवश्यक है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब यह योग की क्रियाएं की जाती हैं और इसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने की संयुक्त राष्ट्र संघ में इस प्रस्ताव को पारित कराया और सहज रूप से सभी ने इसको स्वीकार।
3: इस बार का जो थीम है वो है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। वैसे तो योग हर अवस्था में हर उम्र में उसका अपना योगदान है, लेकिन एजिंग लोगों के लिए विशेष करके उनकी एजिलिटी बनी रहे, उनका कॉन्शियसनेस बना रहे, उनका सब तरीके से शारीरिक अवस्था अच्छी रहे, मानसिक अवस्था अच्छी रहे, इसको लेकर के योगा फॉर हेल्दी एजिंग, इसको प्रमोट करने के लिए योगा का थीम रखा गया है।
4: योग को अपनी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बनाए हम सब। योग से ही जीवन के सारे रोग दूर हो सकते हैं और साथ ही साथ जीवन जीने की एक पद्धति बन सकती है योग। ऐसा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व भर में योग को एक नया स्थान दिखाया है। आप देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत भारत की संस्कृति को विश्व के पटल पर पहुंचाया था। एक बहुत बड़ा वो एक लैंडमार्क इवेंट था भारत के इतिहास में। वैसा ही योग को एक विश्व भर में एक नया स्थान देना, भारत की संस्कृति को स्वामी विवेकानंद जी के बाद में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व पटल पर पहुंचाया है, ये हम सब आज उसी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए
5: चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो योग को अपनाएं। योग जो है जस्ट कीप्स यू सो बैलेंस्ड एंड सो फोकस्ड, और एक यू विल फील वेरी पॉजिटिव एज वेल व्हेन यू टेक अप योगा। कंसिस्टेंसी के बिना और डिसिप्लिन के बिना आप ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि योग जो है वो इंडिया को बिलोंग करता है और वेस्टर्नर्स अपना रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ठान लिया है कि योग को वो इम्पोर्टेंस देंगे और योग को आज ये जो अहमियत दी जा रही है वो उनकी बदौलत है।
6: आई थिंक फिट रहने के लिए कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। जो भी आप करते हो उसे डेली बेसिस पे करना बहुत ज़रूरी है। योगा डे एस्टैब्लिश होने से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक बात ज़रूर कह दी दुनिया को कि ये हमारा था, हमारा है और हमेशा हमारा रहेगा। हम यहाँ से योगा को हर चीज़ गोरे हमें हर चीज़ यहाँ से लेकर जाते हैं, उसको सिर्फ अच्छी पैकिंग करके दोबारा वापस लेके आते।
7: फिटनेस starts with your self, you know, अगर आप फिटनेस में बिलीव करते हैं तो मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है, एक किस्म का डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है और योगा जो है वो चीज़ आपको सिखाती है।
8: And Prime Minister Narendra Modi commissioned 3 indigenously built frontline Indian Navy platforms, Dunagiri, Sanshodhak and Agra in Kolkata today, marking a major milestone in India's maritime and defense capabilities. He underscored the importance of Atmanirbharta, saying a strong navy is vital for national development and maritime security. He said that the induction marks a major boost to India's maritime capabilities and defense self-reliance. The platforms include Dunagiri, an advanced stealth frigate, Sanshodhak, a large survey vessel, and Agra, an anti-submarine warfare shallow watercraft. The construction of the 3 platforms saw extensive participation from Indian industry, including 200 MSMEs, and generated substantial direct and indirect employment across the country. And Mumbai witnessed a glittering gathering of political leaders, business tycoons, Bollywood celebrities as the wedding celebration of NCP SP MP Supriya Sule's daughter Revati Sule unfolded over 2 lavish days. The star-studded festivities saw the presence of some of the biggest names from across the country, including Amitabh Bachchan, Rahul Gandhi, Akhilesh Yadav, DK Shivkumar, Bhagwant Mann and RSS Chief Mohan Bhagwat. Actor Shah Rukh Khan added his trademark charm to Lok Sabha MP Supriya Sule's daughter Revati's pre-wedding festivity. Revati, an alumna of the London School of Economics, tied the knot with Sarang Lakhani, who is from the Columbia Business School and the son of businessman and politician Arun Lakhani.
9: From the newsroom, to the studio, to the thick of political action.
10: Now watching NDTV 24. 24/7. The hope is that beyond this election, this will be one of the major issues. With multiple challengers in the fray, the TMC also has done a bit of rejig. Remember, this is also a district that has been plagued by communal violence. Come to some of the sabhas that the BJP is also organizing, especially in the villages of West Bengal.
9: When stories have impact.
11: Padmasar Joshi, managing editor and prime time anchor.
9: Then news has influence. The buck stops here with Padmaja Joshi.
10: Your work is being watched by people. You think that you're making an impact in this time. I think that's really a huge validation, very rewarding, and I'm pretty certain that Team Any TV will go from strength to strength.
8: After weeks of controversy, legal battles, intense scrutiny, the NEET UG 2026 re-examination finally concluded. Conducted under unprecedented security arrangements, the retest marks the culmination of NTA's efforts to restore confidence in the medical entrance process following the paper leak row. 22 lakh aspirants, more than that, appeared for the examination across hundreds of cities in India and abroad. From biometric verification, CCTV surveillance to multi-layer frisking, authorities left little to chance. With exam now over, attention shifts to the answer key, evaluation process and the eventual results. And with the students, the lakhs of students who have given their examination, who have taken their examination, we're getting you different voices today on the broadcast. Let's hear it from the students who have prepared hard, who have taken this examination twice this time. Joining us on the broadcast is Ananya Raj. She's a NEET aspirant. Payoja Sarkar, she's another NEET aspirant. We also have Keshav Agarwal, who's a director at the Coaching Federation of India. We also have Dr. Shaista, who's an executive member of FIMA, which is a federation of All India Medical Association.

0: 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। Our target must be to be more energetic at 50 than we were at 30. Our target must be to be more resistant to lifestyle disease at 70 than we were at 50. This is where yoga can help us. It helps us tune our bodies to be flexible. It keeps our energy level high. It also helps us maintain a calm, stress-free life and help to keep lifestyle disease away. Moreover, with regular practice, yoga teaches us to remain lifelong learners of our own bodies and minds. The more we know about ourselves, the better we can manage ourselves. That is why yoga for healthy aging, this theme must be seen as one for people of all ages, not just for the elderly.
1: हम सब आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को वैश्विक मान्यता देकर के भारत के लोगों को, 140 करोड़ भारतवासियों को दुनिया के अंदर गौरव के साथ आगे बढ़ने और उसकी नींव पर एक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हम सबके लिए एक विजन प्रस्तुत किया है।
2: योग दिवस के अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। योग का जहां तक प्रश्न है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से यदि हम अपने को स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं तो नित्य योग क्रिया करना यह बहुत ही आवश्यक है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब यह योग की क्रियाएं की जाती हैं और इसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने कि संयुक्त राष्ट्र संघ में इस प्रस्ताव को पारित कराया और सहज रूप से सभी ने इसको स्वीकार।
1: इस बार का जो थीम है वो है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। वैसे तो योग हर अवस्था में, हर उम्र में उसका अपना योगदान है, लेकिन एजिंग लोगों के लिए विशेष करके उनकी एजिलिटी बनी रहे, उनका कॉन्शियसनेस बना रहे, उनका सब तरीके से शारीरिक अवस्था अच्छी रहे, मानसिक अवस्था अच्छी रहे, इसको लेकर के योगा फॉर हेल्दी एजिंग, इसको प्रमोट करने के लिए योगा का थीम रखा गया है।
2: योग को अपनी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बनाए हम सब। योग से ही जीवन के सारे रोग दूर हो सकते हैं और साथ ही साथ जीवन जीने की एक पद्धति बन सकती है योग। ऐसा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व भर में योग को एक नया स्थान दिखाया है। आप देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत भारत की संस्कृति को विश्व के पटल पर पहुंचाया था। एक बहुत बड़ा वो एक लैंडमार्क इवेंट था भारत के इतिहास में। वैसा ही योग को एक विश्व भर में एक नया स्थान देना, भारत की संस्कृति को स्वामी विवेकानंद जी के बाद में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व पटल पे पहुंचाया है। ये हम सब आज उसी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए
3: मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो योग को अपनाएं। योग जो है जस्ट कीप्स यू सो बैलेंस्ड एंड सो फोकस्ड, और एक यू विल फील वेरी पॉजिटिव एज वेल when you take up yoga. कंसिस्टेंसी के बिना और डिसिप्लिन के बिना आप ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि योग जो है वो इंडिया को बिलोंग करता है और वेस्टर्नर्स अपना रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ठान लिया है कि योग को वो इम्पोर्टेंस देंगे और योग को आज ये जो अहमियत दी जा रही है वो उनकी बदौलत है।
4: आई थिंक फिट रहने के लिए कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। जो भी आप करते हो उसे डेली बेसिस पे करना बहुत ज़रूरी है। योगा डे एस्टैब्लिश होने से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक बात ज़रूर कह दी दुनिया को कि ये हमारा था, हमारा है और हमेशा हमारा रहेगा। हम यहाँ से योगा को हर चीज़ गोरे हमें हर चीज़ यहाँ से लेकर जाते हैं, उसको सिर्फ अच्छी पैकिंग करके दोबारा वापस लेके आते।
5: फिटनेस स्टार्ट्स विथ योर सेल्फ, यू नो, अगर आप फिटनेस में बिलीव करते हैं तो मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है, एक किस्म का डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है और योगा जो है वो चीज़ आपको सिखाती है।
6: And Prime Minister Narendra Modi commissioned 3 indigenously built frontline Indian Navy platforms, Dunagiri, Sanshodhak and Agre in Kolkata today, marking a major milestone in India's maritime and defence capabilities. He underscored the importance of Atmanirbharta, saying a strong Navy is vital for national development and maritime security. He said that the induction marks a major boost to India's maritime capabilities and defence self-reliance. The platforms include Dunagiri, an advanced stealth frigate, Sanshodhak, a large survey vessel, and Agre, an anti-submarine warfare shallow watercraft. The construction of the 3 platforms saw extensive participation from Indian industry, including 200 MSMEs, and generated substantial direct and indirect employment across the country. And Mumbai witnessed a glittering gathering of political leaders, business tycoons, Bollywood celebrities as the wedding celebration of NCP SP MP Supriya Sule's daughter Revati Sule unfolded over 2 lavish days. The star-studded festivities saw the presence of some of the biggest names from across the country, including Amitabh Bachchan, Rahul Gandhi, Akhilesh Yadav, DK Shivkumar, Bhagwant Mann and RSS Chief Mohan Bhagwat. Actor Shah Rukh Khan added his trademark charm to Lok Sabha MP Supriya Sule's daughter Revati's pre-wedding festivity. Revati, an alumna of the London School of Economics, tied the knot with Sarang Lakhani, who is from the Columbia Business School and the son of businessman and politician Arun Lakhani.

0: 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। Our target must be to be more energetic at 50 than we were at 30. Our target must be to be more resistant to lifestyle disease at 70 than we were at 50. This is where yoga can help us. It helps us tune our bodies to be flexible. It keeps our energy level high. It also helps us maintain a calm, stress-free life and help to keep lifestyle disease away. Moreover, with regular practice, yoga teaches us to remain lifelong learners of our own bodies and minds. The more we know about ourselves, the better we can manage ourselves. That is why yoga for healthy aging, this theme must be seen as one for people of all ages, not just for the elderly.
1: हम सब आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को वैश्विक मान्यता देकर के भारत के लोगों को, 140 करोड़ भारतवासियों को दुनिया के अंदर गौरव के साथ आगे बढ़ने और उसकी नींव पर एक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हम सब के लिए एक विजन प्रस्तुत किया है।
2: योग दिवस के अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। योग का जहां तक प्रश्न है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से यदि हम अपने को स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं तो नित्य योग क्रिया करना यह बहुत ही आवश्यक है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब यह योग की क्रियाएं की जाती हैं और इसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने कि संयुक्त राष्ट्र संघ में इस प्रस्ताव को पारित कराया और सहज रूप से सभी ने इसको स्वीकार।
3: इस बार का जो थीम है वो है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। वैसे तो योग हर अवस्था में, हर उम्र में उसका अपना योगदान है, लेकिन एजिंग लोगों के लिए विशेष करके उनकी एजिलिटी बनी रहे, उनका कॉन्शियसनेस बना रहे, उनका सब तरीके से शारीरिक अवस्था अच्छी रहे, मानसिक अवस्था अच्छी रहे, इसको लेकर के योगा फॉर हेल्दी एजिंग, इसको प्रमोट करने के लिए योगा का थीम रखा गया है।
4: योग को अपनी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बनाए हम सब। योग से ही जीवन के सारे रोग दूर हो सकते हैं और साथ ही साथ जीवन जीने की एक पद्धति बन सकती है योग। ऐसा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व भर में योग को एक नया स्थान दिखाया है। आप देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत भारत की संस्कृति को विश्व के पटल पर पहुंचाया था। एक बहुत बड़ा वो एक लैंडमार्क इवेंट था भारत के इतिहास में। वैसा ही योग को एक विश्व भर में एक नया स्थान देना, भारत की संस्कृति को स्वामी विवेकानंद जी के बाद में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व पटल पर पहुंचाया है, ये हम सब आज उसी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए
5: चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो योग को अपनाएं। योग जो है जस्ट कीप्स यू सो बैलेंस्ड एंड सो फोकस्ड, और एक यू विल फील वेरी पॉजिटिव एज वेल व्हेन यू टेक अप योगा। कंसिस्टेंसी के बिना और डिसिप्लिन के बिना आप ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि योग जो है वो इंडिया को बिलोंग करता है और वेस्टर्नर्स अपना रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ठान लिया है कि योग को वो इम्पोर्टेंस देंगे और योग को आज ये जो अहमियत दी जा रही है वो उनकी बदौलत है।
6: आई थिंक फिट रहने के लिए कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। जो भी आप करते हो उसे डेली बेसिस पे करना बहुत ज़रूरी है। योगा डे एस्टैब्लिश होने से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक बात ज़रूर कह दी दुनिया को कि ये हमारा था, हमारा है और हमेशा हमारा रहेगा। हम यहाँ से योगा को हर चीज़ गोरे हमें हर चीज़ यहाँ से लेकर जाते हैं, उसको सिर्फ अच्छी पैकिंग करके दोबारा वापस लेके आते।
7: फिटनेस starts with your self, you know, अगर आप fitness में believe करते हैं तो mentally fit होना बहुत ज़रूरी है, एक किस्म का discipline होना बहुत ज़रूरी है और yoga जो है वो चीज़ आपको सिखाती है।
8: And Prime Minister Narendra Modi commissioned 3 indigenously built frontline Indian Navy platforms, Dunagiri, Sanshodhak and Agra in Kolkata today, marking a major milestone in India's maritime and defence capabilities. He underscored the importance of Atmanirbharta, saying a strong navy is vital for national development and maritime security. He said that the induction marks a major boost to India's maritime capabilities and defence self-reliance. The platforms include Dunagiri, an advanced stealth frigate, Sanshodhak, a large survey vessel, and Agra, an anti-submarine warfare shallow watercraft. The construction of the 3 platforms saw extensive participation from Indian industry, including 200 MSMEs, and generated substantial direct and indirect employment across the country. And Mumbai witnessed a glittering gathering of political leaders, business tycoons, Bollywood celebrities as the wedding celebration of NCP SPMP Supriya Sule's daughter Revati Sule unfolded over 2 lavish days. The star-studded festivities saw the presence of some of the biggest names from across the country, including Amitabh Bachchan, Rahul Gandhi, Akhilesh Yadav, DK Shivakumar, Bhagwant Mann and RSS chief Mohan Bhagwat. Actor Shah Rukh Khan added his trademark charm to Lok Sabha MP Supriya Sule's daughter Revati's pre-wedding festivity. Revati, an alumna of the London School of Economics, tied the knot with Sarang Lakhani, who is from the Columbia Business School and the son of businessman and politician Arun Lakhani.
9: Front lines of Kargil, the fury of Operation Sindoor,
10: so many attacks,
9: the chaos and cries,

0: 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। Our target must be to be more energetic at 50 than we were at 30. Our target must be to be more resistant to lifestyle disease at 70 than we were at 50. This is where yoga can help us. It helps us tune our bodies to be flexible. It keeps our energy level high. It also helps us maintain a calm, stress-free life and help to keep lifestyle disease away. Moreover, with regular practice, yoga teaches us to remain lifelong learners of our own bodies and minds. The more we know about ourselves, the better we can manage ourselves. That is why yoga for healthy aging, this theme must be seen as one for people of all ages, not just for the elderly.
1: हम सब आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को वैश्विक मान्यता देकर के भारत के लोगों को, 140 करोड़ भारतवासियों को दुनिया के अंदर गौरव के साथ आगे बढ़ने और उसकी नींव पर एक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हम सब के लिए एक विजन प्रस्तुत किया है।
2: योग दिवस के अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। योग का जहां तक प्रश्न है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से यदि हम अपने को स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं तो नित्य योग क्रिया करना यह बहुत ही आवश्यक है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब यह योग की क्रियाएं की जाती हैं और इसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में इस प्रस्ताव को पारित कराया और सहज रूप से सभी ने इसको स्वीकार।
3: इस बार के जो थीम है वो है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। वैसे तो योग हर अवस्था में हर उम्र में उसका अपना योगदान है, लेकिन एजिंग लोगों के लिए विशेष करके उनकी एजिलिटी बनी रहे, उनका कॉन्शियसनेस बना रहे, उनका सब तरीके से शारीरिक अवस्था अच्छी रहे, मानसिक अवस्था अच्छी रहे, इसको लेकर के योगा फॉर हेल्दी एजिंग, इसको प्रमोट करने के लिए योगा का थीम रखा गया है।
4: योग को अपनी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बनाए हम सब। योग से ही जीवन के सारे रोग दूर हो सकते हैं और साथ ही साथ जीवन जीने की एक पद्धति बन सकती है योग। ऐसा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व भर में योग को एक नया स्थान दिखाया है। आप देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत भारत की संस्कृति को विश्व के पटल पर पहुंचाया था। एक बहुत बड़ा वो एक लैंडमार्क इवेंट था भारत के इतिहास में। वैसा ही योग को एक विश्व भर में एक नया स्थान देना, भारत की संस्कृति को स्वामी विवेकानंद जी के बाद में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व पटल पे पहुंचाया है, ये हम सब आज उसी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के
5: लिए चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो योग को अपनाएं। योग जो है जस्ट कीप्स यू सो बैलेंस्ड एंड सो फोकस्ड, और एक यू विल फील वेरी पॉजिटिव एज वेल when you take up yoga. कंसिस्टेंसी के बिना और डिसिप्लिन के बिना आप ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि योग जो है वो इंडिया को बिलोंग करता है और वेस्टर्नर्स अपना रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ठान लिया है कि योग को वो इम्पोर्टेंस देंगे और योग को आज ये जो अहमियत दी जा रही है वो उनकी बदौलत है।
6: आई थिंक फिट रहने के लिए कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। जो भी आप करते हो उसे डेली बेसिस पे करना बहुत ज़रूरी है। योगा डे एस्टैब्लिश होने से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक बात ज़रूर कह दी दुनिया को कि ये हमारा था, हमारा है और हमेशा हमारा रहेगा। हम यहाँ से योगा को हर चीज़ गोरे हमें हर चीज़ यहाँ से लेकर जाते हैं, उसको सिर्फ अच्छी पैकिंग करके दोबारा वापस लेके आते।
7: फिटनेस स्टार्ट्स विथ योर सेल्फ, यू नो, अगर आप फिटनेस में बिलीव करते हैं तो मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है, एक किस्म का डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है और योगा जो है वो चीज़ आपको सिखाती है।
8: And Prime Minister Narendra Modi commissioned 3 indigenously built frontline Indian Navy platforms, Dunagiri, Sanshodhak and Agre in Kolkata today, marking a major milestone in India's maritime and defence capabilities. He underscored the importance of Atmanirbharta, saying a strong Navy is vital for national development and maritime security. He said that the induction marks a major boost to India's maritime capabilities and defence self-reliance. The platforms include Dunagiri, an advanced stealth frigate, Sanshodhak, a large survey vessel, and Agre, an anti-submarine warfare shallow watercraft. The construction of the 3 platforms saw extensive participation from Indian industry, including 200 MSMEs, and generated substantial direct and indirect employment across the country. And Mumbai witnessed a glittering gathering of political leaders, business tycoons, Bollywood celebrities as the wedding celebration of NCP SP MP Supriya Sule's daughter Revati Sule unfolded over 2 lavish days. The star-studded festivities saw the presence of some of the biggest names from across the country, including Amitabh Bachchan, Rahul Gandhi, Akhilesh Yadav, DK Shivakumar, Bhagwant Mann and RSS chief Mohan Bhagwat. Actor Shah Rukh Khan added his trademark charm to Lok Sabha MP Supriya Sule's daughter Revati's pre-wedding festivity. Revati, an alumna of the London School of Economics, tied the knot with Sarang Lakhani, who is from the Columbia Business School and the son of businessman and politician Arun Lakhani.
9: Launch control, 0 to 100.
10: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move. This car makes no sense, yet it makes every sense.
11: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
12: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
13: President Trump, what about the import of Russian oil? Sanctions on the import of oil.
14: We are looking at that. We're seeing how far the price of oil comes down. It's really tumbling. It's, I guess, 74, 75 right now. So it's down. It's soon going to be at the number that it was 4 months ago. It's pretty amazing. And on top of that, we will have an Iran without a nuclear weapon, which I can tell you the Prime Minister feels very strongly about that, too.
15: Can you speak to the defense relationship between India and the United States?
14: I think it's a great relationship. I can tell you this. If anybody attacks that man, we're going to be there.
16: Landed in the beautiful state of Andhra Pradesh, which has no shortage of its own superstars. And that's why it's our pleasure to be joined today on NDTV by Pawan Kalyan, the Deputy Chief Minister of Andhra Pradesh. Good to have you, sir. You were recently denied permission, sir, on Telangana Formation Day.
17: I think somehow they're scared. Otherwise, there is no need for them to deny permission.
16: Is the India bloc, you know, up on its last legs?
17: I had seen in my family, they were very strong supporters of Congress. As long as Indira Gandhiji was, even to an extent Rajiv Gandhiji was there, they could slowly, but the disconnect started because of their policies. I really expected some kind of a greater understanding when this man, Mr. Rahul Gandhi, if I go and meet people, that gives me a very entire greater understanding, greater depth. But I felt after walking from Kanyakumari to Kashmir, and the way he understood, he made, then I said he has become more shallow.
16: You know, it was genuinely a first day, first show kind of perfect political storm for Vijay. What went through your mind when you saw it unfold?
17: I came into politics in 2007, and from then...
16: Two decades.
17: Two decades.
16: Yeah, amazing.
17: And it was a tough journey for me. And sometimes I felt like giving up. Sometimes I feel like, why the hell I did? I was in politics. I wish I could have such kind of smooth journey like Mr. Vijay. In that way, I said, okay, I was envious.
16: You have a good relationship with the BJP and especially with Prime Minister Modi.
17: This man is the future of our country. Mm. And we need it.
8: Hello and welcome. You're watching NDTV 24/7. I'm Anusha Soni. A quick check of the headlines. High-level negotiations in Switzerland kick off. Negotiation between the United States and Iran with mediation of Qatar and Pak now underway. NDTV live from US-Iran talks venue. Exclusive access from Birkenstock. Only Indian network at the talks venue. Second NEET exam for UG aspirant concludes. Exam held amid heavy security and surveillance. The world marks International Yoga Day 2026. Millions across continents come together on the mat to celebrate India's ancient gift to humanity. India's maritime capabilities get a major boost with Prime Minister Modi commissioning three new naval ships in Kolkata.

0: 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। Our target must be to be more energetic at 50 than we were at 30. Our target must be to be more resistant to lifestyle disease at 70 than we were at 50. This is where yoga can help us. It helps us tune our bodies to be flexible. It keeps our energy level high. It also helps us maintain a calm, stress-free life and help to keep lifestyle disease away. Moreover, with regular practice, yoga teaches us to remain lifelong learners of our own bodies and minds. The more we know about ourselves, the better we can manage ourselves. That is why yoga for healthy aging, this theme must be seen as one for people of all ages, not just for the elderly.
1: हम सब आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को वैश्विक मान्यता देकर के भारत के लोगों को, 140 करोड़ भारतवासियों को दुनिया के अंदर गौरव के साथ आगे बढ़ने और उसकी नींव पर एक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हम सब के लिए एक विजन प्रस्तुत किया है।
2: योग दिवस के अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। योग का जहां तक प्रश्न है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से यदि हम अपने को स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं तो नित्य योग क्रिया करना यह बहुत ही आवश्यक है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब यह योग की क्रियाएं की जाती हैं और इसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने की संयुक्त राष्ट्र संघ में इस प्रस्ताव को पारित कराया और सहज रूप से सभी ने इसको स्वीकार।
3: इस बार के जो थीम है वो है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। वैसे तो योग हर अवस्था में हर उम्र में उसका अपना योगदान है, लेकिन एजिंग लोगों के लिए विशेष करके उनकी एजिलिटी बनी रहे, उनका कॉन्शियसनेस बना रहे, उनका सब तरीके से शारीरिक अवस्था अच्छी रहे, मानसिक अवस्था अच्छी रहे, इसको लेकर के योगा फॉर हेल्दी एजिंग, इसको प्रमोट करने के लिए योगा का थीम रखा गया है।
4: योग को अपनी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बनाया हम सब। योग से ही जीवन के सारे रोग दूर हो सकते हैं और साथ ही साथ जीवन जीने की एक पद्धति बन सकती है योग। ऐसा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व भर में योग को एक नया स्थान दिखाया है। आप देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत भारत की संस्कृति को विश्व के पटल पर पहुंचाया था। एक बहुत बड़ा वो एक लैंडमार्क इवेंट था भारत के इतिहास में। वैसा ही योग को एक विश्व भर में एक नया स्थान देना, भारत की संस्कृति को स्वामी विवेकानंद जी के बाद में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व पटल पे पहुंचाया है, ये हम सब आज उसी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए।
5: मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो योग को अपनाएं। योग जो है जस्ट कीप्स यू सो बैलेंस्ड एंड सो फोकस्ड, और एक

21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर

0: to be more energetic at 50 than we were at 30. Our target must be to be more resistant to lifestyle disease at 70 than we were at 50. This is where yoga can help us. It helps us tune our bodies to be flexible. It keeps our energy level high. It also helps us maintain a calm, stress-free life and help to keep lifestyle disease away. Moreover, with regular practice, yoga teaches us to remain lifelong learners of our own bodies and minds. The more we know about ourselves, the better we can manage ourselves. That is why yoga for healthy aging, this theme must be seen as one for people of all ages, not just for the elderly.
1: हम सब आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को वैश्विक मान्यता देकर के भारत के लोगों को, 140 करोड़ भारतवासियों को दुनिया के अंदर गौरव के साथ आगे बढ़ने और उसकी नींव पर एक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हम सबके लिए एक विजन प्रस्तुत किया है।
2: योग दिवस के अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। योग का जहां तक प्रश्न है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से यदि हम अपने को स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं तो नित्य योग क्रिया करना यह बहुत ही आवश्यक है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब यह योग की क्रियाएं की जाती हैं और इसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने कि संयुक्त राष्ट्र संघ में इस प्रस्ताव को पारित कराया और सहज रूप से सभी ने इसको स्वीकार।
3: इस बार का जो थीम है वो है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। वैसे तो योग हर अवस्था में, हर उम्र में उसका अपना योगदान है, लेकिन एजिंग लोगों के लिए विशेष करके उनकी एजिलिटी बनी रहे, उनका कॉन्शियसनेस बना रहे, उनका सब तरीके से शारीरिक अवस्था अच्छी रहे, मानसिक अवस्था अच्छी रहे, इसको लेकर के योगा फॉर हेल्दी एजिंग, इसको प्रमोट करने के लिए योगा का थीम रखा गया है।
4: योग को अपनी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बनाए हम सब। योग से ही जीवन के सारे रोग दूर हो सकते हैं और साथ ही साथ जीवन जीने की एक पद्धति बन सकती है योग। ऐसा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व भर में योग को एक नया स्थान दिखाया है। आप देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत भारत की संस्कृति को विश्व के पटल पर पहुंचाया था। एक बहुत बड़ा वो एक लैंडमार्क इवेंट था भारत के इतिहास में। वैसा ही योग को एक विश्व भर में एक नया स्थान देना, भारत की संस्कृति को स्वामी विवेकानंद जी के बाद में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व पटल पर पहुंचाया है, ये हम सब आज उसी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए।

21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। Our target must be to be more energetic at 50 than we were at 30. Our target must be to be more resistant

0: to lifestyle disease at 70 than we were at 50. This is where yoga can help us. It helps us tune our bodies to be flexible. It keeps our energy level high. It also helps us maintain a calm, stress-free life and help to keep lifestyle disease away. Moreover, with regular practice, yoga teaches us to remain lifelong learners of our own bodies and minds. The more we know about ourselves, the better we can manage ourselves. That is why yoga for healthy aging, this theme must be seen as one for people of all ages, not just for the elderly.
1: हम सब आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को वैश्विक मान्यता देकर के भारत के लोगों को, 140 करोड़ भारतवासियों को दुनिया के अंदर गौरव के साथ आगे बढ़ने और उसकी नींव पर एक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हम सब के लिए एक विजन प्रस्तुत किया है।
2: योग दिवस के अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। योग का जहां तक प्रश्न है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से यदि हम अपने को स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं तो नित्य योग क्रिया करना यह बहुत ही आवश्यक है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब यह योग की क्रियाएं की जाती हैं और इसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने कि संयुक्त राष्ट्र संघ में इस प्रस्ताव को पारित कराया और सहज रूप से सभी ने इसको स्वीकार।
3: इस बार का जो थीम है वो है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। वैसे तो योग हर अवस्था में, हर उम्र में उसका अपना योगदान है, लेकिन एजिंग लोगों के लिए विशेष करके उनकी एजिलिटी बनी रहे, उनका कॉन्शियसनेस बना रहे, उनका सब तरीके से शारीरिक अवस्था अच्छी रहे, मानसिक अवस्था अच्छी रहे, इसको लेकर के योगा फॉर हेल्दी एजिंग, इसको प्रमोट करने के लिए योगा का थीम रखा गया है।
4: योग को अपनी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बनाए हम सब। योग से ही जीवन के सारे रोग दूर हो सकते हैं और साथ ही साथ जीवन जीने की एक पद्धति बन सकती है योग। ऐसा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व भर में योग को एक नया स्थान दिखाया है। आप देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत भारत की संस्कृति को विश्व के पटल पर पहुंचाया था। एक बहुत बड़ा वो एक लैंडमार्क इवेंट था भारत के इतिहास में। वैसा ही योग को एक विश्व भर में एक नया स्थान देना, भारत की संस्कृति को स्वामी विवेकानंद जी के बाद में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व पटल पे पहुंचाया है, ये हम सब आज उसी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के
5: लिए चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो योग को अपनाएं। योग जो है जस्ट कीप्स यू सो बैलेंस्ड एंड सो फोकस्ड और एक यू विल फील वेरी पॉजिटिव एज वेल व्हेन यू

21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। Our target must be to be more energetic at 50 than we were at 30. Our target must be to be more resistant to lifestyle disease at 70 than we were at 50.

0: This is where yoga can help us. It helps us tune our bodies to be flexible. It keeps our energy level high. It also helps us maintain a calm, stress-free life and help to keep lifestyle disease away. Moreover, with regular practice, yoga teaches us to remain lifelong learners of our own bodies and minds. The more we know about ourselves, the better we can manage ourselves. That is why yoga for healthy aging, this theme must be seen as one for people of all ages, not just for the elderly.
1: हम सब आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को वैश्विक मान्यता देकर के भारत के लोगों को, 140 करोड़ भारतवासियों को दुनिया के अंदर गौरव के साथ आगे बढ़ने और उसकी नींव पर एक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हम सब के लिए एक विजन प्रस्तुत किया है।
2: योग दिवस के अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। योग का जहां तक प्रश्न है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से यदि हम अपने को स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं तो नित्य योग क्रिया करना यह बहुत ही आवश्यक है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब यह योग की क्रियाएं की जाती हैं और इसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने कि संयुक्त राष्ट्र संघ में इस प्रस्ताव को पारित कराया और सहज रूप से सभी ने इसको स्वीकार।
3: इस बार का जो थीम है वो है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। वैसे तो योग हर अवस्था में, हर उम्र में उसका अपना योगदान है, लेकिन एजिंग लोगों के लिए विशेष करके उनकी एजिलिटी बनी रहे, उनका कॉन्शियसनेस बना रहे, उनका सब तरीके से शारीरिक अवस्था अच्छी रहे, मानसिक अवस्था अच्छी रहे, इसको लेकर के योगा फॉर हेल्दी एजिंग, इसको प्रमोट करने के लिए योगा का थीम रखा गया है।
4: योग को अपनी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बनाए हम सब। योग से ही जीवन के सारे रोग दूर हो सकते हैं और साथ ही साथ जीवन जीने की एक पद्धति बन सकती है योग। ऐसा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व भर में योग को एक नया स्थान दिखाया है। आप देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत भारत की संस्कृति को विश्व के पटल पर पहुंचाया था। एक बहुत बड़ा वो एक लैंडमार्क इवेंट था भारत के इतिहास में। वैसा ही योग को एक विश्व भर में एक नया स्थान देना, भारत की संस्कृति को स्वामी विवेकानंद जी के बाद में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व पटल पर पहुंचाया है, ये हम सब आज उसी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए।
5: मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो योग को अपनाएं। योग जो है जस्ट कीप्स यू सो बैलेंस्ड एंड सो फोकस्ड, और एक यू विल फील वेरी पॉजिटिव एज वेल व्हेन यू टेक अप योगा। कंसिस्टेंसी के बिना और डिसिप्लिन के बिना आप ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि योग जो है वो इंडिया को बिलोंग करता है और वेस्टर्नर्स अपना रहे हैं।

21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। Our target must be to be more energetic at 50 than we were at 30. Our target

0: must be to be more resistant to lifestyle disease at 70 than we were at 50. This is where yoga can help us. It helps us tune our bodies to be flexible. It keeps our energy level high. It also helps us maintain a calm, stress-free life and help to keep lifestyle disease away. Moreover, with regular practice, yoga teaches us to remain lifelong learners of our own bodies and minds. The more we know about ourselves, the better we can manage ourselves. That is why yoga for healthy aging, this theme must be seen as one for people of all ages, not just for the elderly.
1: हम सब आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को वैश्विक मान्यता देकर के भारत के लोगों को, 140 करोड़ भारतवासियों को दुनिया के अंदर गौरव के साथ आगे बढ़ने और उसकी नींव पर एक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हम सब के लिए एक विजन प्रस्तुत किया है।
2: योग दिवस के अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। योग का जहां तक प्रश्न है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से यदि हम अपने को स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं तो नित्य योग क्रिया करना यह बहुत ही आवश्यक है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब यह योग की क्रियाएं की जाती हैं और इसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने कि संयुक्त राष्ट्र संघ में इस प्रस्ताव को पारित कराया और सहज रूप से सभी ने इसको स्वीकार।
3: इस बार के जो थीम है वो है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। वैसे तो योग हर अवस्था में, हर उम्र में उसका अपना योगदान है, लेकिन एजिंग लोगों के लिए विशेष करके उनकी एजिलिटी बनी रहे, उनका कॉन्शियसनेस बना रहे, उनका सब तरीके से शारीरिक अवस्था अच्छी रहे, मानसिक अवस्था अच्छी रहे, इसको लेकर के योगा फॉर हेल्दी एजिंग, इसको प्रमोट करने के लिए योगा का थीम रखा गया है।
4: योग को अपनी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बनाए हम सब। योग से ही जीवन के सारे रोग दूर हो सकते हैं और साथ ही साथ जीवन जीने की एक पद्धति बन सकती है योग। ऐसा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व भर में योग को एक नया स्थान दिखाया है। आप देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत भारत की संस्कृति को विश्व के पटल पर पहुंचाया था। एक बहुत बड़ा वो एक लैंडमार्क इवेंट था भारत के इतिहास में। वैसा ही योग को एक विश्व भर में एक नया स्थान देना, भारत की संस्कृति को स्वामी विवेकानंद जी के बाद में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व पटल पे पहुंचाया है, ये हम सब आज उसी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए।
5: मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो योग को अपनाएं। योग जो है जस्ट कीप्स यू सो बैलेंस्ड एंड सो फोकस्ड।